verse number 14. Us din wohi hoga. Elan Rabbul Izzat wa kaha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kafa bi nafsika alayka al-yawma hasiba. Ay Musliman. 17:14. Tera khud ka nafs kaafi hai aaj ke din tere khilaf gawahi dene ke liye, tera hisab o kitab karne ke liye. Tera nafs matlab tu khud kaafi hai, khuda ko hisab kitab karne ki teri zarurat nahi. Mauzu bar bar wapas yaad dilata hu, fauz tak jana hai. Fauz kaun payega? Jiske paas khashyat e parwardigar hai, तक्वाए इलाही परवरदिगार का परहेज़गार आदमी है. कौन होगा वो जो अल्लाह को जानता होगा. अल्लाह ने बात, अल्लाह की बात हमारे सामने आ गई. लेकिन मैंने कहा ना, अगर तू भूल जाता है तो खुदा को भूल जा, कोई बात नहीं. अली ने दूसरा नुस्खा दिया. एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मौलाए कायनात ने कहा इअलमु या इबादल्लाह. अजीब. इअलमु इबादल्लाह. ए खुदा के बंदो, जान लो, समझ लो, अपना लो, ये इल्म रख लो. इअलमु इबादल्लाह. आपने देखा यहाँ पर भी मौलाए कायनात ने जो बात करनी है वो किसके लिए की है? अल्लाह के बंदों के लिए की है, जिसका दावा हम सब करते हैं. दावा हमने कर लिया, मैंने भी कर लिया. लेकिन देखिए मौला हमें क्या कह रहे हैं. इअलमु इबादल्लाह अन्ना अलैकुम रसदन मिन अनफुसिकुम व उयूनन फी जवारिहिकुम. ए अल्लाह के बंदो, जान लो कि तुम्हारा नफ्स जो है ना, उसको एक दिन रसीद देनी पड़ेगी. यही नफ्स तुम्हारा हिसाब किताब करेगा. और खुदा ने तुम्हारी अंदर उयून देखने वाले को रखा है जो तुम्हारे आज़ा है. आज़ा जिस्म के हिस्से. बात क्या हो रही थी? खुदा से डरना है. खुदा अगर उसको हम भूल जाएंगे तो ऐ मुसलमान, तू खुदा को मानने वाला है, खुदा की किताब पर तेरा ईमान है, इसलिए जाके देख खुदा ने क्या कहा है. ये खुदा की हमसे मोहब्बत है, इसलिए कहा है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे भूल जाता है तो मैं तुझे याद दिलाता हूं कि कैसे तू मुझे याद कर सकता है. सूरह यासीन क्या हम नहीं पढ़ते? सूरह यासीन को हम पढ़ते हैं ना. वहां पर सूरह यासीन कुरान मजीद का 36वां सूरह है, चैप्टर 36, और आयत का निशान है 65. सबको आयत आती होगी. और आप यहाँ कुरान पढ़ते हो तो मैं चाहता हूँ मिन्हाज भाई आप पूरी करें, फिर मैं पढ़ूंगा. 65वीं आयत इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्यौमा नख्तमु अला अफवाहिम. याद है थोड़ी सी आयत? फिर अहसंत. अल्यौम नख्तमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम. फिर व तशहदो अर्जुलहुम बिमा कानू यकसिबून. आज के दिन, क़यामत के दिन, हम लोगों को, लोगों के मुंह को बंद कर देंगे. अल्यौम नख्तमु अला अफवाहिम. आज के दिन किसी को बोलने का हक नहीं होगा, गवाही देने का हक नहीं होगा. बोलेगा कौन? हाथ बोलेगा. अल्यौम नख्तमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम. जबान नहीं बोल पाएंगी, ये हाथ बोलेंगे. व तशहदु अर्जुलहुम, और उनके पैर जो है ना वो गवाही देंगे. तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यकसिबून. ये हाथ गवाही देगी, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर गवाही देंगे कि हमने इन खुदा के आज़ा से क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया. मालूम हुआ कि अगर मैंने खुदा की सिफत को भुला दिया है कि वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ खबर रखने वाला है, वो देख रहा है, दिलों के राज को जानता है, आंखों की खयानत को जानता है, हर चीज हर लफ्ज को लिखता है, ये सब अगर मैं भूल गया, मैं अपने आप को नहीं भूल सकता.

कि जिसको खुदा मिल गया उसने क्या खोया और जिसने खुदा को खो दिया उसने क्या पाया। यह हुसैन का जुमला था, किस लिए? ताकि हुसैन के मानने वालों खुदा वाले बन जाए, खुदा को न भूले, खशियत परवरदिगार हो। और अगर खशियत परवरदिगार आ गई तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी मिल जाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हस्ब मामूल आज दूसरी तारीख है, सबके यहां अलग अलग रस्म है। दो साल पहले जब मैं आया था और मैंने आज कई कई मंडली से सुनी, अभी तक मैंने नहीं सुना, इसलिए इसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। इख्तलाफ अपनी जगह छोड़ दीजिए। आज की तारीख दूसरी तारीख हस्ब मामूल हुसैन की एक छोटी सी बेटी का तज़किरा होता है। अरब हजरात के यहाँ उसको फातिमा अल अलीला कहते हैं, वो फातिमा के जो बीमार थी। कल हमने सुना ना, हुसैन ने अपने खाने वादे को कहा कि अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा, अब सफ़र की तैयारियां हो रही है, लेकिन हुसैन ने फैसला दे दिया कि कुछ लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। नानी उम्मे सलमा बहुत ज़यीफ़ है, वो नहीं आएगी। मोहम्मद हनफिया बीमार है, वो नहीं आएगी। एक रिवायत की बिना पर जनाब उम्मुल बनीन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी ज़यीफ़ी की वजह से वो भी नहीं आएगी। और इस छोटी सी फहरिस्त में इख्तलाफ को छोड़ते हुए एक हुसैन की छोटी बच्ची है कि जो बीमार है, फातिमा सुग़रा। ये ऐलान हो चुका, हुसैन मज़लूम ने बीबियों को कहा कि सबसे रुख्सत हो लो, मेरा उस्ताद मौलाना सादिक हसन साहब सब उसको जानते होंगे। ये जब फातिमा सुग़रा का तज़किरा करते हैं तो बयान करते हैं कि हुसैन ने बीबियों को ये तलकीन की थी कि बीबियों जब फातिमा सुग़रा से रुख्सत होना तो जल्दी जल्दी से विदा ले लेना, रुख्सती को ले लेना, ऐसा न हो कि मेरी बेटी फातिमा सिफारिश कर ले कि मुझे भी काफिला के साथ आना है। बस बीबियों ने अमल किया, लेकिन एक वक्त वो आया कि जब जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम विदा के लिए बीबी के पास आई है, कौन है फातिमा सुग़रा, कौन है जनाब ज़ैनब, बस खुदा हाफिज़ी हो रही थी, उतने में उस छोटी सी सुग़रा ने ज़ैनब का थामन थाम लिया और कहा, फूफी अम्मा इतनी जल्दी क्यों करते हो, क्या मैम आप बाबा से ये सिफारिश नहीं कर सकते कि मुझे भी साथ में ले चलो, मैं अपना ख्याल खुद रखूँगी, किसी के मैं जहमत नहीं दूंगी। बस ये बात होनी थी, जनाब ज़ैनब अपने माजाए भाई के पास आए और मौलाना कहते हैं हुसैन मज़लूम से कहा भाई ये बेटी पे बहुत तरस आता है, अगर हम इनको अपने साथ ले ले तो हर्ज क्या है। तो वहाँ से जवाब क्या आया, कहा ज़ैनब आपको पता है ना मेरी कुछ ऐसी औलाद है कि जो हम शक्ल नबी है, मेरी कोई ऐसी औलाद है जो हम शक्ल अली है, और ये फातिमा सुग़रा मेरी माँ की शबी है। हुसैन ये नहीं चाहते के फातिमा की शबी बेमकना वो चादर बाजारों में फिराई जाए। बस अजादारो ये काफिला मदीने से निकला, अभी थोड़ी देर ही नहीं निकला था कि किसी ने हुसैन को आकर कहा मौला रुक जाइए, गजब हो गया, कहा क्या हुआ, कहा मौला घर से आपकी बेटी फातिमा सुग़रा एक लकड़ी के सहारे पीछे पीछे आ रही है। बस काफिले को रोका गया, हुसैन अपनी सवारी से नीचे आए और आके फातिमा सुग़रा से कहा का बेटा खुदा हाफिज तो कह लिया था, अब क्या हो गया, का बाबा जान एक आखिरी बार मैं अपने नन्हे से अली असगर को अपनी गोद में लेना चाहता हूं। हुसैन बाप थे और बेटी के बाप थे, बेटी को जानते थे, हुक्म दिया अली असगर को लाया जाए। बस अजादारो वो छोटे से अली असगर को जनाब फातिमा

0: सुग्रा की गोद में दिया गया। थोड़ी देर न हुई, हुसैन ने निदा दी, बस अब देर होने वाली है, आगे काफले को ले जाना है। हुसैन ने कहा अब असगर को ले लो। कोई एक बीबी गई, शायद उसके बाद दूसरी गई। हुसैन को कहा गया मौला असगर आने के लिए तैयार नहीं। अब हुसैन बेनफ्से नफीस आए, जनाबे सुग्रा के पास आए। अरे मौलाना सादिक हसन कहते हैं हुसैन ने अपने लबों को वो छोटे से असगर के कानों में कुछ कहा, क्या कहा पता नहीं, किताबों में लिखा नहीं, लेकिन चश्मे तसव्वुर ये कहता है कि शायद हुसैन ने कहा होगा, ऐ मेरा बेटा अली असगर, मुझ हुसैन को करबला में तेरी जरूरत है। बस ये शायद सुनना होगा। वो छोटा सा अली असगर हुसैन की गोश में आ गया। अला लअनतुल्लाह अल-क़ौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लदीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।
1: When we gather like this, when every corner of the Shia world gathers like this on the first night of Muharram, and we commit to remembering Imam Hussein day in and day out for at least 10 nights, that remembrance, that dhikr of Imam Hussein does not elevate his legacy with all due respect. His legacy is already up there. He has 4,000 angels right now. 4,000 angels, Hadith says, that are simply circulating his wari, sending their salams to him. That remembrance does not elevate the person who's remembered. It elevates the people who are remembering that legacy. These 10 nights are absolutely about us. And a golden opportunity has been presented in front of us. So make it a point inside your homes. And it begins from the home to prepare your families for the journey towards Imam Hussein's majlis. Ensure that they enter this majlis in the utmost etiquette, in the utmost adab, in the utmost respect. If that means that you check them over once in a while, then that's okay. If that means you straighten out their legs, it's okay. If that means you sit them up, if they're half lying down, that's okay. If that means you get them off the phone, then that's okay. But let them know that this is not an ordinary event. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.

0: आजादार घराने के यहाँ शोरों शराबा करना अल्लाह को पसंद नहीं।
1: तुम तो खामोश रहो, अल्लाह तुम्हारे बाप को न बख्शे। जब कारवा की हिफाजत करने का तुम पे दम नहीं था तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली? जंग के वक्त तुम क्या कर रहे थे? कारवा बर्बाद हो गया।
0: क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जंगजू जिंदा वापस आया? अगर मेरी मौत से तुम्हें सुकून मिलता है तो ये मेरी गर्दन तुम्हारे कदमों में है।
2: क्या तुम्हारी गर्दन हमारे लिए दाल रोटी बनेगी? मेरे शोहर ने एक उम्र इस घराने की खिदमत की, लेकिन उसे खबर नहीं कि उसकी मौत के वक्त सलामोपुर से ऐसे उसकी बीवी को महरूम रखा गया।
3: बहुत बेख्याल हो गए हैं जनाब औहद। महीना भी नहीं गुजरा कि हम सब भूख से मरने लगे हैं।
0: सब्र करें, गमों का तूफान रुक जाए फिर आप लोग आ जाएं। ये घराना भी आप ही की तरह आजादार है। हिम्मत रखें और अपने मुतालबे को वक्त पर छोड़ दें।
4: वक्त पर छोड़ दें, सब्र करें, मतलब आपकी बात समझे।
2: कौन सी इज्जत? हम इन्हीं की वजह से तो मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इन्हें यतीम कर गए जुनैद।
0: अल्लाह तुम्हारे शोहर की मगफिरत करे।
2: जाते वक्त ये तय नहीं पाया था।
0: क्या तय किया था?
2: जो कुछ भी था औलाद की यतीमी नहीं थी। कहो ना जान निकलते वक्त तुम उसके सिरहाने थे और मेरा शोहर अकेला नहीं था।
0: था?
2: उसके कातिल के साथ क्या किया?
5: मैंने खून बहाया लेकिन तुम्हारी इज्जत को खाक में मिलने नहीं दिया।
6: रद्द किया तुमने मेरी इजाजत के बगैर, हालात और बदतर कर दिए।
5: मुझे देर से खबर मिली, मशवरा करने का वक्त।
6: मशवरे का वक्त नहीं था, तुमने पूरे कारवा और भाई के कत्ल का हुक्म दिया। मशवरा करने का हुक्म नहीं था? हा?
5: आप मेरा यकीन नहीं करते।
6: यकीन न खाते?
5: मेरा यकीन
6: तुम बोलते तो।
5: खुदा की कसम आपको यकीन नहीं आता। रागिब की बात कहाँ और नईम की बात की हैसियत कहाँ? अगर जरा सी देर करता तो काम हो जाता। जनाब आवाद, आपकी इज्जत की पासदारी का सिला मलामत और नाराजगी नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कोई बुरा हादसा पेश नहीं आया।
6: अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा पेश नहीं आया? क्या ये हादसा नहीं? ये हादसा नहीं? अल्लाह ने रहम किया कि नाइला जिंदा बच गई।
5: पहले से ही तुम्हारी बेटी को मारने का इरादा नहीं था, वो बेवजह डर गई है। बहुत पैसा खर्च किया है कि हर जगह ये खबर फैले कि राहजनों ने खून बहाया है। मैंने कहा था कि नायला के सिवा किसी पर भी रहम ना करें।
6: बकवास बंद करो।
5: अगर ऐसा ना होता तो मरने वालों में एक और इजाफा हो जाता।
6: लेकिन मैंने कुछ और सुना है। नायला, नायला, नायला यहाँ आओ।

0: कान खोल कर सुनो, मेरी बात सुनो और ठीक से जवाब दो। जब राहजनों ने कारवा वालों को मारना शुरू किया, क्या वो सिर्फ दूसरों को लूटना और कत्ल करना चाहते थे या तुम्हारी तरफ भी आए?
1: सब कुछ तो आप जानते हैं, मेरे पास कोई नई बात नहीं है कहने के लिए।
0: जरूरत पड़े तो 100 बार भी दोहराओगी उस दिन क्या हुआ।
1: कुछ तो ख्याल करो औहद, नहीं देखते हो कि ना चेहरे पे रंग है और ना जिस्म में जान है।
0: नायरा जान, बताओ उस रोज आखिर क्या हुआ?
1: मेरी जान, जानती हो कि दोबारा दोहराना तुम्हारे लिए तकलीफ देह है, लेकिन अगर मुमकिन है तो एक बार फिर बयान कर दो बेटी।
0: हिलाल, हिलाल,
2: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी गूंगी हो गई है, उसे इंसान की जबान समझ में नहीं आती है। तुमने उस रोज क्या देखा? किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की या नहीं?

0: Majid. Majid.
1: जी हुक्म करें।
0: राघीब के जनाजे के करीब एक चटाई बिछाओ। मैं अकेला बैठना चाहता हूँ।

0: खुदा की खुदाई की कसम, उस किस्से में पहली और आखिरी शर्त नायला की सलामती थी। मैं पागल नहीं हूं कि अपनी बहन को नुकसान पहुंचाऊं। कौन है ये जो ना जानता हो कि नायला आपके लिए अपनी जान से ज्यादा अजीज है? बाबा, क्या ये मुमकिन है कि मैं नायला के कत्ल की साजिश करूं?
1: बकवास बंद, तू मरो नहीं। एक उम्र तक मैं नायला की तरफ तुम्हारी नफरत भरी निगाहों को देखता रहा, खून के घूंट पिए और कुछ ना बोला। मुझे यकीन नहीं आता कि एक रोज मेरे सामने बैठकर इस तरह बेदर्दी से अपनी मेरी की हुई गलतियों को इनकार करोगे। उसे जान से मारना चाहते थे,
2: जान से मारना चाहते थे बदबख्त।
0: ना,
1: तुम्हारे ख्याल में मैं नहीं जानता कि तुम खलवत में उसे कैसे पुकारते हो। बोलो कि तुम आज अपनी हया खो चुके हो, यह भी कहो कि तन्हाई में क्या पुकारते हो।
2: कनीज जादी,
1: तू हो तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हें जरा सी गारत होती तो अपनी बहन को यूं नहीं पुकारते। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ।
0: मैं वो
2: दफा हो बाहर,
1: दफा हो जाओ।

सुनती हो सामिया, पे दर पे अल्लाह की हम्द व सना करता है। अफसोस कि अल्लाह की ताअत व बंदगी में एक परिंदे से भी पीछे रह गए।

0: जनाबे तमार, आप कहते हैं दूसरे के खतूत पर मोहर लगाओ, उसके लिए मेरा दिल राजी नहीं। दिल चाहता है खुद अलग एक खत लिखो।
1: ठीक है, खुद ही लिखो।
0: कुछ समझ में नहीं आता, अक्ल काम नहीं कर रही। ऐसा क्या लिखूं कि इमाम समझ जाएं उनके आने का वक्त हो चुका है?
1: अगर उन्हें इमाम मानती हो और ये एतिकाद रखती हो तो जान लो कि इमाम तुमसे बेहतर जानते हैं कि कब जाने का वक्त और कब आने का।
2: सलाम मीसान।
1: अलैकुम अस्सलाम।
2: एक सवाल था।
1: पूछो।
2: मिस्र में तिजारत का बंदोबस्त हुआ है, बच्चों और घर से दूरी का खौफ है, क्या करूं?

0: दुनिया की लज्जतें उतनी नहीं हैं जो तुम्हें राजी कर सकें, लेकिन आखिरत की बरकत बहुत ज्यादा है। फैसला तुम पर है। बिस्मिल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह मेहरबान।
1: खुदा हाफिज।
0: इस खजूर के फल देने का वक्त कब आएगा नहीं जानता।
2: तमार, मेरी बात सुन रहे हैं?
0: तुम्हारे चांद हिलाल की क्या खबर है?
2: मौला हुसैन के लिए मेरी बेचैनी और इंतजार को देखते हो और मेरे बेटे के बारे में पूछते हो।
0: इंतजार को समझने के लिए पहले अपने बेटे के साथ मेजबानी के आदाब की मशक करो। जब ये सीख लोगी ना, फिर बड़ी मेजबानी का वक्त होगा।
2: इशारों में बातें कर रहे हैं? आप शहरे कूफा के बुजुर्ग हैं। आसमान की तरफ हाथ उठाएं और आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि हिलाल रास्ता भटक चुका है।
0: हिलाल की माँ, इतनी सख्ती ना करो। आदमियों की आकेबत अल्लाह के हाथ में है और वो बहुत अच्छा लिखता है।
3: तमार, आपके दरख्त की क्या खबर है? अभी इसमें खजूरें नहीं आई?
0: आएंगी। अभी इस दरख्त के नाज का वक्त है और इसे मीसम की जरूरत नहीं।
4: तुम तमार का हो, पागल हो पागल। जाओ।
2: बंद करो, दफा हो जाओ। लानत हो तेरी नस्ल पर तुरैस, तुम्हारे ही जैसा बदजुबान और गुस्ताख तेरा बेटा भी है।
0: सुनो, यहाँ इस मर्तबा बड़े काम को अल्लाह पर छोड़े काफी है। जितना हमें मेहनत करना था कर चुके हैं। अपने छोटे छोटे कामों को अंजाम देते हैं। इमाम के लिए उसे भेजना भी अल्लाह के हवाले। आओ, बिस्मिल्लाह।

0: उस दिन से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली जब आपके दामाद ने रागिब के कारवां के हादसे की खबर दी कि मैं आकर माजरत करूं। माजरत चाहता हूं। हिलाल भी मेरे बेटे की तरह ही है, लेकिन अगर वो मेरा खून भी होता ना, फिर भी वही बात कहता और वो यही उम्मीद करता।
1: अब जब के दिलसोज बाप की मानिंद मेरे बेटे की मौत की आवाज रखते हो, तो फिर बाप की जिम्मेदारी को पूरा निभाओ।
0: तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? हिलाल अब बच्चा नहीं है जो अच्छे और बुरे में तमीज ना कर सके। क्या हमने उसे कम समझाया या कम नसीहतें की? हुआ क्या?
1: इस बार मेरा इसरार हालात के बेहतर होने की उम्मीद के सबब है। मुझे डर है कि इमाम आ जाए और इस सामिया का घराना तैयार ना हो।
0: क्या हिलाल के लिए कोई फर्क पड़ता है कि इमाम आए या ना आए?
1: क्यों फर्क नहीं पड़ता? सिर्फ इसके कान के करीब बैठकर बोलने की जरूरत है कि मुस्तकबिल हमारा है। मेरे बेटे के दिल में मोहब्बत अली है।
0: तुम्हारे बेटे के दिल में अली की मोहब्बत थी जब तक कि हिलाल तुम्हारे दस्तरखान पर रोटी खाता था, लेकिन जब से उसका दिल मजेदार निवालों का असीर हो गया है, हक बात को उसने तर्क कर दिया है और उस्मानियों के दस्तरखान का आदी हो गया है। ना उसके दिल में कोई मोहब्बत रह गई है और ना कान में कोई नसीहत जाती है।
1: मैंने कुछ लोगों से पूछा है, मेरे बेटे का माल मुश्तबा है, लेकिन उसने मेहनत की है और मजदूरी का सिला लिया है।
0: किससे सिला लिया है उसने? मैं नहीं कहता कि गैर शिया के साथ काम ना करो, लेकिन उस्मानियों के साथ नहीं। जो लोग उस्मानियों की दस्तरखान की तहारत का हुक्म देते हैं, वो सिफिन में कहां थे? सामिया, तुमने खुद देखा कि औहद और उसके खानदान ने किस तरह हमारे इमाम के सामने तलवार निकाली थी। मेरा गिला और दर्द उस्मानियों से है, जिनका मुंह सिर्फ बुग्ज़े अली और औलादे अली के लिए चलता है। अगर सिर्फ अली को चौथा खलीफा भी मानते और उसका लिहाज रखते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन ये लोग अली को मुसलमान तक नहीं जानते हैं।
1: मेरी आंखें और दिल गमगीन हैं। क्या करूं फाजिल? जनाबे हबीब ने कहा है अपने बेटे की सिफारिश आपसे करूं, किसी काम में लगा दे। ऐसा कुछ करो कि उसकी अक्ल औहद के पास रहने को राजी ना हो।
0: आपकी और जनाब हबीब की बात सर आंखों पर। हिलाल से बोलें कि कल से वो काम पर आ जाए।

0: तुम जा सकते हो, तुम आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है?
1: अहमद बिन अब्दुल्ला।
0: तीर और कमान उठाओ। अहमद बिन
1: अब्दुल्ला,
0: उस सफेद निशान पर खड़े हो जाओ। सफेद तीर तुमने अच्छी किस्मत की खातिर उठाया या फिर?
1: ये तीर हिंद की लकड़ी से बनाया गया है। ये ज्यादा तेज और हल्का भी है। ये बेमिसाल है। लेकिन ये तीर जंगली सुअर जैसे सख्त जान शिकार को करीब से मारने के लिए है।
0: उन दो आदमियों के साथ खड़े हो जाओ। अगला आ जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा जान?
2: खुदा की कसम हिलाल, खलीफा ने मेरा पूरा हिस्सा काट दिया है। बहुत ही मोहताज हूँ। अगर तुमने मुझे कबूल न किया तो फिर मैं क्या करूँगा?
0: मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घराने की जरूरत और परेशानी का इल्म है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मुहाफिज और कमादार के लिए बाजू की ताकत और जवान आदमी की जरूरत है। मैं शर्मिंदा हूँ।
3: इब्ने हनीफ,
0: सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम। जब मुहाफिजों के चुनाव के बाद तुमसे कुछ बात करनी है।
0: इस तरफ चलें। कमान उठाओ और शुरू हो जाओ।
3: इनको चुनने के लिए इनकी जंग महारत को सिर्फ जांचते हो या फिर दूसरी शर्तों का होना भी जरूरी है? मिसाल के तौर पर जितना ज्यादा बेरहम अच्छा है।
0: ये इशारा था या फिर कोई नया हादसा पेश आया जिससे मैं बेखबर हूँ?
3: आज मेरे बाप के घर शोर शराबे में तुम क्यों चुप थे? तुमने जुनैद का नाम क्यों नहीं लिया? जुनैद तुम्हारा आदमी था, उसके खयानत को क्यों छुपाया? उसके गुनाह पर पर्दा डाला या खुद को मेरे बाप के गुस्से की आग से बचाया?
0: कुछ भी नहीं। उसके बाल बच्चों पर तरस खाया। मुझे हैरत है कि उस रोज आप अकेली नहीं थी। मैं भी देख रहा था और यकीन नहीं आ रहा था। अगर उसका नाम लेता तो उसकी बीवी और बच्चे बुरी बला में गिरफ्तार हो जाते हैं।
3: मेरी कनीज मुझे बचाने के लिए दौड़ी और वही हुआ जो तुमने देखा।
4: हिलाल,
3: मालूम नहीं किन पर तुम रहम खाते हो।
4: हिलाल,
0: बाबा जान, मैंने आपको बताया कि उस खानदान को छोड़ दो। उनको दुश्मनों से परेशानी इस कदर ज्यादा है कि फिलहाल वो सब किसी पर रहम नहीं खाएंगे। बाबा जान, आप चले जाएं तो बेहतर है।

0: चलो अब आंखें बंद करो, अब मुंह खोलो।
1: खट्टा था मामू।
2: मैंने क्या मजेदार शोरबा बनाया है। अम्मी दस्तरखान लगा दिया है, क्यों नहीं आती?
3: हाँ मिला खातून और इतनी मेहनत, अल्लाह हिम्मत दे बेटी।
2: खुदा की कसम भूख से मर गए हिलाल।
3: मैंने कहा था भूखी ना रहना।
2: हमने नाफरमानी तो बहुत की थी।
3: बिस्मिल्लाह। आज मैंने फाजिल से बात की है। फाजिल ने कहा कि पहला महीना तो कुछ नहीं, लेकिन अगले महीने से जो कुछ बस में होगा अदा करूंगा, ताकि हिलाल उसके मवेशियों की देखभाल करे और उसके माल की हिफाजत हो।
2: एक महीना तनख्वाह के बगैर?
3: देखो, तुम्हारे भाई का गुजरा हुआ कल अच्छा नहीं। अगरचे औहद की माल और दौलत के बराबर नहीं, लेकिन उसकी तनख्वाह पाक और बेशुबा है।
2: अल्लाह उसका भला करे।
3: तकदीर का कुछ पता नहीं, शायद किसी की माँ का दिल उसके बेटे पर राजी हो जाए।
2: सुन लिया माँ की जान, कल सुबह अव्वल वक्त बाजार में फाजिल की दुकान पर, अब अगर उस दरमियान एक चक्कर लगाओ और उसकी बेटी भी देख लो तो क्या बेहतर होगा?
0: बासित कहाँ है, नहीं आए?
2: पैगाम दिया है कि घर से आएगा। उसके नौकरों के दरमियान लड़ाई हो गई है। कहता था कि इमाम की आमद की खबर इस कदर तेजी से फैल रही है कि उस खबर ने पूरे शहर को घेर लिया है।
3: इस मर्तबा अलग ही बात है। लोग गली और बाजारों में खुल्लम खुल्ला इमाम की आमद के मुतालिक बात कर रहे हैं।
2: मेरे बच्चे का कदम बरकत वाला है।
3: उनकी शान और शौकत इक्तिदार और सल्तनत के दिन खत्म होने को हैं, वही हो उन पर जो उनसे उम्मीद लगाए हुए हों।
2: अगर इमाम आ जाए तो हुकूमत और इक्तिदार शियों के हाथ में आ जाएगा, तुम और बासित और हम सभी।
0: इस कूफा में अली ने 5 साल खिदमत की, आखिरकार क्या हुआ?

0: मेरी जान को आप देख रही थी, मेरी जान कुर्बान।
1: बिल आखिर आ गई बेवफा।
0: जब कारवा की खबर फैली तो शहर में गोया आसमान सर पर गिर पड़ा। मैं बहुत घबरा गई थी, फिर तुम्हारी सलामती

0: की खबर मिली। मैं कई बार तुमसे मिलने के लिए आई, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया।
1: तुमको आने नहीं दिया?
0: कहा कि नायला खातून किसी से मुलाकात नहीं कर सकती।
1: तुम्हारा मसला रिश्तेदारों, अजीजों और दूसरों से बिल्कुल अलाइदा है, तुम्हें मालूम नहीं।
0: आज जब तुम्हारी माँ ने बुलावा भेजा तो मेरी जान में जान आई।
1: आखिर अपना काम कर लिया, आजादारी कर रहे हैं, फिर तुम्हें मुझे समझने के लिए भेजा है।
0: मैं जानती हूँ कि तुम दुल्हन के लिबास के बजाय सिया लिबास पहनने के लिए मजबूर हो। तुम्हारा दिल हरगिज रागिब के साथ नहीं था। उसकी आमद की हजार दास्तान थी और गया भी तो यूं, अपने बाप के सफेद बालों की खातिर, शमीम की खातिर ही सही, बस एक दिन के लिए उनकी ख्वाहिश कबूल कर लो।

0: मेरी जान, अच्छा किया कि अपना लिबास बदल लिया। देख रही हो नाइला, ये सब तुम्हारा गम हल्का करने के लिए आए हैं। थोड़ा खुश रहो। कहाँ जा रही हो बेटी?
1: जनाब नोमान ने आपकी खिदमत में तसलियत अर्ज की है और कहा कि मेरे भाई औहद को सलाम कहना, और कहना अगरचे गम बहुत बड़ा है, आपका भतीजा भी जवान था, लेकिन सभी गम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और अंबिया और सालेहीन के साथ शुमार हो। मुझे मालूम है कि अभी अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन आज ही शामत से एक कासिद आया है कि अभी तक आपका भेजा हुआ सामान वसूल नहीं हुआ है, और ये बात अहले कूफा और आपकी तिजारत खाने के लिए अच्छी नहीं है।
2: मुझे मालूम है, अगर मोहलत दें तो मैं सब ठीक कर दूंगा।
1: अल्लाह का शुक्र कि अगरचे रागिब नहीं, लेकिन अभी आपका जवान बेटा है जो सेहतमंद और बाप के इक्तदार का वारिस है।
2: आइए हलवा और शरबत से अपना मुँह मीठा करें। आइए। शरबत डालो।
3: जनाब औहद, आपसे कुछ
0: अर्ज। अबू जान, यहीं रुको। जब तक आपका कमांडर यहाँ है, आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। ये बुरा हादसा मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से रहाजन और लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं। अबू जान, मेरा इरादा है कि मैं उससे तीर अंदाजी और खंजर जनी सीखूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो।
2: अगर ये काम तुम्हारे लिए इस कदर जरूरी है कि तुम्हें नंगे पांव घर से बाहर निकाल लाया है और तुम्हारे दिल को सुकून बख्शता है, तो तुम मुख्तार हो। ये है तुम्हारे सामने जंग से पलटा हुआ मेरा कमांडर।
1: तुम्हारी बहन खुशकिस्मत थी।
2: अल्लाह का शुक्र, लेकिन उस राह में बहुत सा खून बह गया।
1: अगरचे अच्छी किस्मत तुम्हारे भी साथ थी।
2: ऐसी किस्मत जिससे सिवाय अजाओ मातम के कुछ नसीब ना हुआ।
3: अर्ज कर रहा था।
1: अल्लाह रहमत करे तुम्हारे चचा साहब पर। ताज़ियत पेश करता हूँ बिनते औहद। अल्लाह करे कि गम और मुसीबत इस घर से और अहले खाना से हमेशा दूर।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इन्ना मा अल उसरी युसरा। हर तरह के दिन खत्म हो जाते हैं

0: अल्लाह बेहतर जानता है कि बंदे को किस तरह पुख्ता बनाया जाए।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
2: मैं शर्मिंदा हूं कि तफसील से बातों को नहीं बता सका। हादसे का खौफ इस कदर ज्यादा था कि मेरे जहन से बात निकल गई थी।
3: जनाब कमांडर, क्या चीज तुमने भुला दी? हाँ, क्या तुमने जुनैद का हाथ पकड़कर उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी? हमने उसे अपने मुहाफिजीन में जगह दी तो इसलिए कि तुम पर भरोसा किया था।
2: मैंने उसकी कमानदारी की जिम्मेदारी ली थी, उसके ईमान और दिल की सच्चाई की नहीं। अब अगर इजाजत दें तो मैं देखता हूं कि माजरा क्या है। शायद उसकी बीवी कुछ बताए और कोई गिरह खोले।
3: झूठा कहेगा।
4: कतलोर, गारत का हुक्म देने के अलावा मामला दूसरों के गले डालना भी आता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हिलाल कितना खुश ख्याल है। वह ख्याल कर रहा है कि कातिलों का पता लगाएगा। बेचारा नहीं जानता कि असली कातिल उसकी आंखों के सामने है और उसने इस कत्ल का एतराफ कर लिया है।

0: बहुत मजेदार था, सलामत रहो।
1: अब बोलो।
0: क्या बोलूं?
1: पेट भर गया फिर भी याद नहीं आया। जान भी कुर्बान कर दो तब भी गद्दार रहोगे।
0: इस तरह से मुझसे बात मत करो, समझे?
1: पहले अच्छी तरह सुन लो, फिर मेरे सवाल का जवाब दो। अगर जवाब ना मैं दिया तो तुम यहां से अकेली जाओगी। तुम्हारा शौहर शाम की तरफ जाने से पहले किसके साथ उठता बैठता था?
0: मेरा शौहर ज्यादा बात नहीं करता था, अल्लाह की कसम।
2: झूठ मत बोलो।

0: 耶鲁考考
1: इस मसले को इस तरह हल करोगे? ऐसे शोर शराबे से इतना भी न सोचा कि उल्टा खौफ से जबान बंद हो जाए।
2: इसके खबीस शौहर ने तमाम नक्शों को बर्बाद कर दिया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा।
1: चुप रहो, हमारे इर्द गिर्द नौकरों में कम जासूस नहीं छोड़े गए हैं। फालतू चीख पुकार से उन्हें होशियार न करो।
2: मेरे बेवकूफ बाप को यकीन है कि उसकी बेटी के कत्ल का हुक्म मेरा था। ये भी नहीं सोचा कि कौन गधा बाप की अजीज तरीन जान पर तलवार उठाता है। मैं हिलाल भी पै दर पै आग भड़काता जा रहा है।
1: खौफ ने तुम्हारे होश उड़ा दिए, तुम्हारी मीठी जबान ने सब कुछ उगल दिया और इस तरह सब कुछ बर्बाद कर बैठे।
2: हाँ, मैंने ही कहा और बहुत अच्छा किया कि कहा। अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो, दिमाग खराब कर रही हो। अगर मुझे पता चल जाता कि किसने जुनैद के कान भरे और उसे नायला को कत्ल करने का हुक्म दिया, काश मैं ये समझ जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसका मुंह खुलवाना
1: नहीं,
2: इसको मुंह खोलना ही पड़ेगा।
1: महशर बर्पा करने के बजाय चुपचाप इस मुश्किल का हल तलाश करो। जुनैद की बीवी से बात उगलवाना और हिलाल को जलील और ख्वार करना मेरा काम। अहद का दिल जीतना और उसे एतिमाद में लेना तुम्हारे हवाले।

रहे थे इससे पहले भी और आजकल भी, जिसकी वजह से हमको मर्जेइयत की ज़रूरत पड़ी है। ये भी मेरा डायरेक्ट टॉपिक नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बात हो जाएगी। तो खुलासा यह है कि ज़हूर इमाम के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया, मेरा अंदाज़ा यह है कि जो जनरेशन मेरे सामने है वो मेरी ही जैसी एज की है, यंगस्टर तो होंगे नहीं। सोशल मीडिया आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपके बच्चों का, लेकिन इसमें इस वक्त और ख़ास तौर पर अरब सोशल मीडिया वो भरा पड़ा है ज़माने के इमाम के हवाले से। तो इस अंदाज से हमें मिसगाइड किया जा रहा, जब कोई झूठा इमाम आएगा तो शायद हम उसको सच्चा मान लें, शायद ये बात बाद में होगी। और मैंने कहा एक दूसरी बात भी मैं ज़िमनन बता दूँ, यानी इसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। और ये और पहला मसला दोनों बराबर नहीं है। इमाम बहरहाल इमाम मासूम है, नायब इमाम फिर नायब इमाम। बहुत ज़्यादा इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा, ख़ास तौर पर जैसा मैंने अर्ज़ किया अरब मीडिया में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा। और जो इंतज़ार किया जा रहा वेट इमाम का नहीं, ये इंतज़ार किया जा रहा है अल्लाह तूल उम्र अता करे सेहत के साथ आयतुल्लाह लुज़्मा आगे सिस्तानी को, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा कि अगर जब आगे सिस्तानी का इंतकाल हो जाएगा उसके बाद किस अंदाज से शियत के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी प्लानिंग की गई। ये पहला स्टेप इमाम ज़माना के हवाले से जो होगा वो तो आगे चल के बहुत बड़े लेवल पर होगा, लेकिन इतना इंतज़ार किया जा रहा कि हम और आप शायद इतना इंतज़ार अपने ज़माने के इमाम का नहीं कर रहे जितना हमारे दुश्मन इंतज़ार कर रहे हैं इस अजीम मर्जे के दुनिया से जाने का। खैर तो ये और इसके हवाले से उनके पास पूरी तैयारी मौजूद। आपके इल्म में है कि तकरीबन अगर इस्लामी हिसाब से देखा जाए तो एज 99 के करीब है, इस्लामी हिसाब से 96 होगी अंग्रेज़ी हिसाब से। तो ख़ुलासा ये है कि ये दो ज़िमनी बातें आ गई, ये इसलिए आ गई कि ये आज का एक बहुत ही बड़ा बर्निंग इशू है, इस पर हमको इसलिए तवज्जो देना। अगरचि मुझे अंदाज़ा है कि ये आप हजरात से कहना बेकार, जिस जनरेशन से कहना है वो तो मेरी बात समझ भी नहीं पाती है, लैंग्वेज बैरियर है, और मेरी बात नहीं समझ पाती है और आपकी बात भी नहीं समझ पाती है, इसलिए कि यहाँ तो बहरहाल हर बच्चा अपनी जगह खुद मुख्तार है, न बाप न माँ न शोहर बीवी न बीवी शोहर, ये बात की चीज़ें। तो वापस आ जाइए, कहाँ से बात चली थी आप भूल गए होंगे, जो अक्सर होता है मेरी मजलिसों में। तो बात ये चली थी कि फ्राइडे ज़हूर इमाम का दिन माना गया है, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं है, हतमी नहीं है। ये मत समझिए कि फ्राइडे ही को इमाम आएंगे, बल्कि सैटरडे की रिवायत भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवायत है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 60% फ्राइडे का है तो 40% सैटरडे की रिवायत भी, लेकिन वो जो ज़ियारत हम पढ़ते हैं उस ज़ियारत ही के अंदर मेंशन किया गया है अल मुतवक्का फीहि ज़हूरक, मौला आज फ्राइडे है जब एक्सपेक्टेड है कि आपका ज़हूर होगा, कंफर्म नहीं है कि फ्राइडे को होगा, उसी ज़ियारत में ये लफ्ज़ मौजूद है। उस ज़ियारत में तीन लफ्ज़ बहुत अहम है फ्राइडे की ज़ियारत। नंबर एक यही लफ्ज़ कि आप ज़माने के इमाम को फ्राइडे को सलाम कर रहे हैं, और इसलिए सलाम कर रहे हैं कि वो दिन इमाम ज़माना का दिन, लेकिन उसी सलाम में आप कह रहे हैं कि अल मुतवक्का फी ज़हूरक, मौला मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि आज आप ज़ाहिर होंगे, तवक्को है एक्सपेक्टेशन है, ये लफ्ज़ एक्सपेक्टेशन बता रहा कि फ्राइडे का दिन चेंज हो सकता है। दूसरा लफ्ज़ भी उसमें एक बहुत अहम है, घर के उसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हो सकता है लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि मेरे पास इस अशरे का टॉपिक कुछ और वो ये है कि उसमें ज़माने के इमाम को भी सलाम किया गया है और इमाम की औलाद को भी सलाम किया गया। ये अपनी जगह एक इशू है, कोई मजहबी इशू नहीं, कोई अकीदे का मसला नहीं, मालूमात के लिए। भाई जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उसको मिले, लेकिन अगर कोई उसको ना माने उन मालूमात को, उस इंफॉर्मेशन को कोई तस्लीम ना करे तो कोई हरज नहीं है, यह कोई अकीदे का हिस्सा नहीं। जैसे अब इमाम की शहादत किस तारीख को हुई, हर मोमिन का दिल चाहता है तारीख उसको पता चले ताकि उस दिन वो गम मनाए, अपने वालिदैन की मौत से ज़्यादा उस दिन उसको गम मनाना। अब अगर कहे कि नहीं आप फलां डेट को कहते हैं, हमारे नज़दीक डेट नहीं है दूसरी डेट, तो ये शियत से निकला भी नहीं है, गुनाहगार भी नहीं हुआ, ये फासिक व फाजिर भी नहीं हुआ, इसने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी नहीं किया, क्योंकि ये अकीदे का हिस्सा नहीं कि सातवें इमाम सेवन्थ दूसरे इमाम सेवन्थ सफ़र की शहादत हुई है कि 28 सफ़र की शहादत हुई। तो इसी तरह से इमाम ज़माना के बारे में ये भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, कुछ लोगों से मेरी मुराद आम लोग नहीं, उलमा
और उलमा भी।

कहा मर गया, कहा हमको जल्दी है, हम हज के लिए जा रहे हैं, कौन मरा? कहा अबू ज़र। ओ हो, बस इतना सुनना था कि सर पीट लिया लोगों ने। इतना अजीम सहाबी रसूल दुनिया से चला गया और उसकी बेवा औरत इस तरह सड़क के किनारे बैठी हुई है, सबने कहा हज बाद में हो जाएगा, ये बाद में नहीं हो सकता, रुके। और गुस्लो कफन के लिए जाने लगे, रोक दिया अबू ज़र की बेवा ने, रोक दिया, अभी नहीं, अभी गुस्ल नहीं, अभी कफन नहीं, रुक जाओ। कहा हमें जल्दी है तो हमें तो क्यों रोक रही, हम तो रुके इसी काम के लिए। कहा नहीं, अबू ज़र की वसीयत कि जो भी मुझे गुस्लो कफन देने आएगा पहले उसे मेरे माल से खाना खिलाओ और उसकी खिदमत करो, उसके बाद फिर गुस्लो कफन की जिम्मेदारी अदा की जाएगी। ये होता है करीम का एक मामूली सा 1%, समझ लीजिए कि पहले खाना खाओगे मेरे माल से, खिदमत करूंगा तुम्हारी, इसके बाद फिर तुमसे कोई खिदमत लूंगा। ये अबू ज़र जितने बड़े भी करीम हो, और वो जो जुमला मैंने शुरू में कहा उसको रिपीट करूं, और जितने सच्चे हो, मासूमीन का तो कोई मैच ही नहीं है ना, मासूमीन से कोई मुकाबला ही नहीं, मासूमीन तो अबू ज़र के मुकाबले में क्या कहूँ, 100 टाइम्स मिलियन टाइम्स, ये भी गलत करीम है। जब अबू ज़र का ये तरीका है, ये पैगंबर इस्लाम के बहुत शुरू के सहाबियों में एक सहाबी, बाद लोगों ने लिखा है कि 5वें सहाबी थे, इन्होंने एक ऐसी सुन्नत इस्लाम में कायम की है कि जो कयामत तक बाकी रहेगी। और आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कभी मुझसे ये कहा हो कि आप उलमा और आप मौलाना हजरात फला चीज़ पढ़ते हैं, इसका रेफरेंस दीजिए। हर चीज़ के बारे में लोग पूछते हैं, रेफरेंस क्या, कहाँ लिखा हुआ है। यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि हमारी कौम में कितने ऐसे लोग हैं जिनको हर चीज़ पर रेफरेंस चाहिए, कहाँ से पढ़ दिया आपने, किस किताब में लिखा हुआ है। आलिम वालिम की बात तो मानते नहीं है, मर्जे तो उनकी निगाह में कोई हैसियत ही नहीं रखता, लेकिन रेफरेंस जरूर। मगर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी ने आज तक मुझसे रेफरेंस नहीं पूछा। एक, जब किसी की मौत की खबर आए लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई नहीं पूछता कहाँ लिखा हुआ। और उससे भी पहले सलाम, जब दो मुसलमान मिलते हैं सलाम करते हैं, कोई नहीं पूछता कहाँ लिखा हुआ, किस किताब में लिखा है, किस इमाम ने कहा है, कुरान की किस आयत में, सब कुछ है लेकिन पूछा किसी ने नहीं। यानी सलाम मुसलमानों के नज़दीक इतनी साबित तयशुदा हकीकत है, सवाल की ज़रूरत नहीं, इस्लाम में पहला सलाम किसने किया, सलाम इस्लाम में आया कहाँ से। और वो जो एक हदीस आपने अक्सर सुनी है और मैं इस मजलिसों में 2-3 दफ़ा और सुनाऊँगा, अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही वद्दालु अलल शर कफ़ाइलिही, अगर कोई आदमी लोगों को नेकी का रास्ता दिखाए या नेकी की कोई ट्रेडिशन कायम करके चला जाए तो जब तक कि उस पर अमल होगा, जो अमल कर रहे हैं उनको तो सवाब मिलेगा, इस सब का सवाब टोटल उस आदमी को मिलेगा जिसने सबसे पहले यह सिलसिला शुरू किया। और यही गुनाह के लिए भी, कि कोई गुनाह का कोई रास्ता खोल दे, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए गुनाह के नए नए तरीके निकल रहे हैं ना, कि जो गुनाह का रास्ता खोले, जिसने गुनाह किया उसको तो उसकी सजा मिलेगी, मगर ये टोटल गुनाह सबके मिलकर कयामत तक जितने लोग गुनाह पे अमल करेंगे सबका टोटल अजाब उस पहले आदमी को भी मिलेगा। जिस पहली औरत ने हिजाब उतारा होगा, उस वक्त से लेके आज तक जितनी भी हिजाब औरतें हैं, हर एक को अपना अलग अलग इंडिविजुअल तो अजाब मिलेगा ही। वो शायद कुछ शब जुमा में बता भी दूँ कि क्या मिलेगा, खवातीन के लिए भी वार्निंग है। और यह है कि लेकिन वो जो पहली औरत थी उसको इन सब का टोटल बेहिजाबी का अजाब मिलेगा। इसी तरह जिसने कोई नई नेकी की रीत अपने सोसाइटी में डाल दी है, इसकी मिसालें बहुत हैं, आगे आ जाएंगी, आज वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं मिसालों को छोड़ देता हूँ। अब यह सलाम, कयामत तक जितने लोगों ने एक दूसरे को सलाम किया है, सब का टोटल सवाब अबू ज़र गफारी के नामे अमल में लिखा जा रहा है, इतना अजीम सहाबी। और उसने ये बताया कि नहीं, कोई खिदमत करने आ रहा है, पहले हम उसका हक अदा करेंगे फिर उससे कोई खिदमत लेंगे। अहले बैत तो बहुत बुलंद, बहुत बुलंद। एक रिवायत पढ़ी जाती है मसाइब में, मैं आपको एक ख़ास तरफ लेके जा रहा हूँ, एक डायरेक्शन है मेरा। मसाइब में एक रिवायत पढ़ी जाती है, मसाइब की रिवायात को उस तरह चेक नहीं किया जाता जिस तरह वुजू और गुसल और नमाज और रोज़े के वाजिबात की रिवायतें। हर रिवायत को चेक करने का क्राइटेरिया अलग, जो हमारे यहाँ सब के लिए एक जैसा क्राइटेरिया बनाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में उनको हिस्ट्री के बहुत सारे वाक़यात पर एतराज़ हो जाता। ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, यानी समझिए कि इसको फिल्टर करके कहा कि हिस्ट्री के वाक़यात पर एतराज़ हो जाता है, क्योंकि क्राइटेरिया वो लाते हैं नमाज की हदीसों का, क्राइटेरिया वो लाते हैं हज की हदीसों का, क्राइटेरिया वो लेके आते हैं। अब कितने आज के, मसलन आप वजू करते हैं, मैं फ़िक़ी मसाइल नहीं बयान करना चाहता इसलिए कि मैंने जैसा अर्ज़ किया यहाँ ज़रूरत ही नहीं, मगर मसलन आप वजू में 2 मरतबा शुरू में हाथ धोते हैं, आगे सिस्तानी के मुस्तहब नहीं है, रिजा की नियत से कर लीजिए,

ठीक है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो हदीस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हिस्ट्री में नहीं चलेगी। अब वो हिस्ट्री में एतराज करते हैं, ये भी फिल्टर करके करबला पे एतराज करते हैं। करबला की हर रिवायत पे उनको एतराज होता है क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया कुछ और कर लिया। ये ऐसा है कि जैसे कोई कंटेनर होता है, बड़ा ट्रक, लोडिंग ट्रक होता है, उसका वेट किया जाता है ना कि कितना इसमें सामान, और सोना और चांदी उसका भी वेट किया जाता है। क्या दोनों में सेम स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम निकलेगा? जो सोने और चांदी का स्केल होता है वो कैसा होगा, और जिसमें पूरे पूरे कंटेनर का या ट्रॉलर का या ट्रक का लोड किया जाता है? तो अब ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है कि हर हदीस को चेक करने का क्राइटेरिया अलग है। ये हदीस अकीदे की है, अलग क्राइटेरिया। ये हदीस वाजिबात की है, अलग क्राइटेरिया। ये हदीस तारीख की है, अलग क्राइटेरिया। ये हदीस करबला से रिलेटेड है, अलग क्राइटेरिया। तो बहरहाल एक रिवायत पढ़ी जाती है मसाइब में, और शायद मैं भी पढ़ूँ दो दिन के बाद, कि जिस वक्त ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ, तो आपको मालूम है ना कि मौला हुसैन के सहाबियों में एक ऐसा सहाबी था जिसकी तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कूफे में गुजरी थी, हबीब इब्न मुज़ाहिर, और उनकी पूरी फैमिली वहीं कूफे में थी। बल्कि हबीब और हबीब की बीवी के दरमियान जो बातचीत हुई थी आका हुसैन का ख़त आने के बाद, वो तो मसाइब में पढ़ी जाती है, मैं भी पढ़ूँगा। अब जिस वक्त ये काफिला वहाँ दाखिल हुआ, उस वक्त यजीद का जो हुक्म था ना कि सब लोग घरों से बाहर निकल आए, मर्द हैं तो सड़कों के ऊपर नए नए कपड़े पहनकर, बिल्कुल जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई परेड होती है, या कोई वीआईपी आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है, सारा मर्द और सारी औरतें मकान की छतों पर बैठी, और मकसद उसका जो था वो तो आपको मालूम है। अब सारी औरतें बैठी हैं, यहाँ हर एक को, हर एक के लिए लाजिम है, ऑर्डर आ चुका। उसमें दो औरतों का जुमला बहुत मशहूर है, एक अभी इत्तेफाक से देखिए, मेरे जहन में नहीं था लेकिन अब इत्तेफाकन जुमला बन गया, मालिक अश्तर जो है, मालिक अश्तर, इनकी बेटी, इनका बेटा तो आपको मालूम है ना मुख्तार के साथी थे, मुख्तार के हवाले से भी यही जुल्म हुआ है ना कि वो क्राइटेरिया वो वाली हदीसें लेके आ रहे हैं लोग कि जो वाजिबात की हदीसों का क्राइटेरिया, तो मुख्तार ठीक थे, ठीक नहीं थे, जो किया अच्छा किया, बुरा किया, ये सारे डिस्कशन आजकल दोबारा शुरू हो चुके हैं। दोबारा मैंने इसलिए कहा कि पहले हुए थे, उलमा की रिसर्च आ गई थी, चैप्टर क्लोज हो गया था, बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा एक मरतबा शुरू हो गए। तो खुलासा यह है कि मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम मुख्तार के राइट हैंड थे। आप जब जाते हैं सामर्रा तो रास्ते में इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर का रोज़ा भी आता है, बड़ी अजीम शख्सियत। अगर ये ना होते तो मुख्तार अपने जिहाद में इस तरह से कामयाब नहीं होते। मुख्तार जो थे हुकूमत कर रहे थे, लेकिन जो बाकायदा मैदान में जंग कर रहे थे वो मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम थे। जैसे मौला के सिपह सालार मालिक अश्तर थे, इस तरह मुख्तार के सिपह सालार इब्ने ज़ियाद मारा ही इब्राहिम की वजह से, इनकी सगी बहन, वो भी कूफे की रहने वाली थी, और उसने ये मंजर देखा था तो कसम खाई थी, और शायद उसी कसम का नतीजा था कि इब्राहिम इस तरह से मुख्तार के साथी बने। और उसने कसम खाई थी कि परवरदिगारा मैं कसम खाती हूँ कि जो इस वक्त अहले बैत पर जुल्म किया गया इसका बदला मेरा घराना लेगा। एक तो उनका जुमला है, हमारी ख्वातीन जो गुजरी हैं तारीख में उनका बहुत अहम रोल भी है किस किस तरह से, लेकिन अभी तो मैं बात कहीं और ले गया, एक ख़ास डायरेक्शन पर मुझे बात को मुकम्मल करना है, तो वापस आइए। दूसरा जुमला जो मशहूर है कूफे में, फिर जहन में रखिएगा कि सारे के सारे वहाँ दुश्मनान अहले बैत की औरतें मकान की छतों पर नहीं बैठी, इक्का दुक्का कहीं 100 में, कहीं 200 में, एक आध मोमिना भी, और उसे आके मकान की छत पे बैठना है क्योंकि ऑर्डर है, मोमिन मर्द है, उसे ऑर्डर है उसे सड़क पे खड़ा होना। आपने अक्सर ये सुना होगा मसाइब में कि अहले बैत का काफिला जा रहा है तो कोई मोमिन आ गया कि मौला मैं क्या खिदमत करूं, और इमाम ने कहा चादर लेके आओ, तो वो सड़क पर आया क्यों था? जब उसको पता था कि अहले बैत का काफिला है तो घर में बैठता, हम और आप तो कभी बर्दाश्त नहीं करते कि इस कस्म की तौहीन के तौहीन आमेज तरीके से अहले बैत को लाया जाए और हम सड़क पे निकल कर ही मंजर देखें, हम तो घर में ही बैठेंगे ना। लेकिन उस वक्त ऑर्डर था, और इमाम का भी ऑर्डर था कि जो हाकिम कह रहे हैं मान लो। खैर, तो खुलासा यह है कि जिस वक्त यह काफिला वाकूफे की गली से गुजर रहा था तो जगह जगह इसको रोका जा रहा था। 11 मुहर्रम की मजलिस में इसका रीज़न भी बताऊँगा, अगरचे आप में से हर एक को मालूम भी है, जगह जगह रोका जा रहा था। एक जगह रोका गया, कहाँ बात हो रही है, सिटी के बाहर नहीं, सिटी में जो मेन स्ट्रीट है सिटी की, उसके अंदर रोका जा रहा, एक जगह रुका। एक छोटे बच्चे ने आके चौथे इमाम का घुटना हिलाया, इमाम ने झुक के देखा कौन, वो सारे मसाइब नहीं पढ़ना चाहता वरना ये इतना आसान जुमला नहीं, गले में तौक, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, कमर में

लंगर, चौथा इमाम, और वो आके घुटना हिलाता है। इमाम ने देखा कौन, कहा मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा हूँ और आपको सलाम करने आया हूँ। एक बार चौथे इमाम ने सबसे पीछे वाले, यानी इमाम के बिल्कुल पीछे जो सबसे आगे वाला ऊँट है उस पर ज़ैनब कुबरा, एक मरतबा मुड़ के देखा, फूफी अम्मा चचा हबीब इब्ने मज़ाहिर का यतीम आया है, वो मुझे सलाम कर रहा। अब ये रिवायत पढ़ी जाती है, जनाब ज़ैनब कुबरा ने फौरन कहा उस बच्चे को देखा कि बेटा तेरी माँ कहाँ। करीब के मकान की आवाज़, छत से आवाज़ आई, एक खातून बैठी हुई, बिल्कुल पुराने ज़माने की छोटी छोटी सड़कें हैं, जैसे मुंबासा के अंदर गलियों में मुझे छोटी छोटी गलियां नज़र आती हैं, दारुस्सलाम का पुराना ओल्ड सिटी, छोटी छोटी गलियां, ऊँट मकान की हाइट के बराबर, ऊँट की हाइट। फौरन आवाज़ आई, शहजादी आपकी कनीज़ यहाँ पर बैठी। ज़ैनब कुबरा का जुमला क्या था, क्या है, ज़ौजा हबीब मैं तुझे ढूंढ रही थी ताकि तुझे तेरे शौहर का पुरसा दूँ। खुद ज़ैनब कुबरा के घर से 18 लाशें उठे हुए हैं, मगर पहला पुरसा दिया, ये करीम कि पहले अपने मरने वालों का ख्याल नहीं किया, पहले हबीब इब्न मज़ाहिर का ख्याल करके उनकी बेवा से कहा कि मैं तुझे ढूंढ रही थी कि तू कूफे में होगी तो मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा दूँ। तो अहले बैत का ये तरीक़ाकार जो है ना, जो अबू ज़र ग़फ़ारी में एक हल्की सी झलक नज़र आई, लेकिन अहले बैत का ये तरीक़ाकार मुहर्रम के हवाले से भी। और इमाम मासूम, हम और आप आज सफ़े अज़ा पर बैठे, आपने वो रिवायतें सुनी होंगी जिन्हें सब सारी रिवायतों को एक जगह पर अल्लामा मजलिसी ने जमा किया है, मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत मशहूर रिवायतें कि अहले बैत यह था करबला का वाक़े पर जो कुछ मातम किया वो तो बाद में किया, मगर अहले बैत से पहले हज़रत आदम करबला में रोए के नहीं रोए, वाक़ा है हज़रत नूह की कश्ती उसी करबला में जब पहुँची थी तूफ़ान में पानी में बहते बहते, और एक दफ़ा कश्ती हिलने लगी, लगा कि डूब जाएगी, मातम किया हज़रत नून। हज़रत इब्राहिम करबला से गुजरे, मातम किया। हज़रत इस्माइल करबला से गुजरे, मातम किया। हज़रत मूसा करबला से गुजरे, मातम किया। हज़रत सुलेमान का तख्त हवा में तैरता था, करबला पे गुजरा तो एक मरतबा ऐसा लगा कि उल्टा हो जाएगा, मातम किया। हज़रत ईसा करबला से गुजरे, मातम किया। मौला अली करबला से गुजरे जंगे सिफीन में जाते वक्त, जब वह शेर फिजा का वाक़या पेश आया, मातम किया। तो अब करबला का गम तो वो है जो करबला से पहले से शुरू हो गया। हम और आप अगर आज इस सफ़े अज़ा पे आके बैठे हैं तो अपने आप को इस एतबार से खुशकिस्मत समझिए कि आप उस सफ़े अज़ा पे आके बैठे जिस पे आदम बैठे, जिस पे नूह बैठे, जिस पे इब्राहिम बैठे, जिस पे मूसा बैठे, जिस पे सुलेमान बैठे, जिस पर ईसा बैठे, जिस पे रसूल खुदा बैठे, जिस पे शहजादी कौनैन आके बैठे, जिस पे मौला अली आके बैठे हैं। बड़ा बुलंद रुतबा है इस सफ़े अज़ा का और इस पर आकर बैठने वालों का, लेकिन यह आज हमारी सफ बिछी, पहली मुहर्रम की रात है, दुनिया भर के अज़ा खाने सज गए, दुनिया भर में लोगों ने अपने अपने घरों का सिस्टम चेंज कर दिया। मुझे कनाडा का नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, पूरा घरों का सिस्टम ही चेंज होकर रह जाता। पूरे 10 दिन तो आप ऐसा मातम करेंगे, पूरा दिन आप काम करते, खाली आदमी तो कोई भी नहीं है, ख़ास तौर पर वेस्ट में रहने वाला, लेकिन इस थकन के आलम में आप भी आते हैं, आपके घर के ख़वातीन भी आती हैं, आपके बच्चे भी आते हैं, आपकी बच्चियां भी आती हैं, रात गए जाते हैं, सुबह सवेरे फिर सिर्फ आका हुसैन की मोहब्बत में। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं ये बाद में, पहले आका हुसैन की वो करीम है ना, करीम इब्ने करीम है, पहले उनकी कर्म नवाजी है, पहले उनकी मेहरबानी है। इसके लिए सिर्फ 2 जुमले अर्ज़ करना है, इसके लिए भी। नंबर 1, आशूर के दिन आखिरी रुख्सत के वक्त, देखिए अभी आशूर का दिन है, हम और आप तो उस वक्त तक मातम नहीं कर रहे थे, हाँ अम्बिया ने मातम किया, मलाइका ने मातम किया, अहले बैत में जब बुज़ुर्ग थे हुसैन के उन्होंने मातम किया, लेकिन हम और आप तो उस वक्त मातम नहीं शुरू किया था हमने। लेकिन आका हुसैन ने आखिरी वसीयत में सैयद सज्जाद से क्या कहा था, जब वापस मदीने जाओ तो मेरे तमाम शियों को मेरा सलाम कहना। आका हुसैन ने सलाम पहले भिजवाया, ज़ियारत आशूरा हम लोग बाद में पढ़ते हैं। आका हुसैन ने हमें पहले सलाम किया, ज़ियारत वारिसा हम बाद में पढ़ते हैं। ज़ियारत वारिसा सलाम है ना, ज़ियारत आशूरा सलाम है ना, ज़ियारत अरबईन जिस पे आके हमारे अमाल मुकम्मल होंगे सलाम है ना, हमारा सलाम बाद में है, उनका सलाम पहले है, क्योंकि करीम उसी को कहते हैं जो पहले देता है, और इस तरह देता है कि अपने घर वालों को भुला के हमको देता है। तो ये जो कुछ आप जहमत उठा रहे हैं उसमें एक बात और याद रखिए, आज की रात और कल का दिन, यानी पहली मुहर्रम की रात और पहली मुहर्रम का दिन, क्योंकि ये बात ज़रा आम हालत में मैं कहता अजीब लगती, इसलिए मैंने इतनी तमहीद बांधी करीम कहकर, अहले बैत की कर्म नवाजी बताकर, अहले बैत की ख्वाहिश बताकर, ये जुमले पे आ रहा हूँ कि ये कबूलियत दुआ की अहम तरीन रातों में से एक रात। यकीनन हमारे यहाँ शब कदर की दुआ बड़ी अहम है, यकीनन हमारे यहाँ शब अरफा और अरफा

लेकिन बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। तो ये दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उसके एतबार से कह रहा हूँ कि मुझ जैसा आदमी जिसे सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता, उसके भी 80,000 व्यूज हो जाते हैं। क्यों? दुआ की वजह से। प्रॉब्लम्स हैं तो दुआ लोगों को चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे जो वाकई जो फेमस किस्म के उलमा हैं उनके आम क्लिप और उनकी दुआओं के क्लिप। तो ये खुद ये चीज़ गवाही दे रही है कि आज की दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कह दे कि मुझे कोई परेशानी कोई मुसीबत नहीं। हाँ, जो वाकान अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले नेक बंदे हैं वो कितने हैं? गिने चुने। तो उनको छोड़ दीजिए कि जो राजी हैं, कि जिस हालत में अल्लाह रख रहा है हम राजी हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं? बहुत ही कम। हर एक को प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को हमने जहन में नहीं रखा, इमाम मासूम ने जहन में रखा। कहा कि तुम आके 2 महीने 8 दिन या 40 दिन या 50 दिन हमारा गम करोगे, मातम करोगे, मगर हम भी देख रहे हैं तुम क्यों मातम कर रहे हो कि जो अहले बैत में मुसीबत आई, मगर हम देख रहे हैं तुम्हारे घर में भी मुसीबतें। घर से दोनों को कोई कंपेयर ही नहीं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। कहाँ अहले बैत और कहाँ हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम। मगर इसी का नाम करीम कि वह हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं। ये अल्लाह की खासियत है ना कि अल्लाह खाली पैसे वालों को नहीं देता। वो जो समंदर की तय में एक पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा है, अल्लाह उसका रिस्क भी इसको वहाँ पहुँचाता है, उसको भी अल्लाह देखता है कि ये भी कहीं इग्नोर ना होने पाए। तो अहले बैत हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को देखते हैं और कहते हैं तो पहले ले लो हमसे, मांग लो। यकीनन हमें पता है मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत की वजह से तुम हमारा मातम करोगे, हमें मालूम, लेकिन हमें तुम्हारे प्रॉब्लम का एहसास है। कोई भी मसला, पहली मुहर्रम जहाँ से अय्याम अज़ा शुरू हो रहे हैं, अब हमें हुसैन का मातम करना है, औलाद हुसैन का मातम करना है, हुसैन के लुटे घराने का मातम करना है, हुसैन की कैदी बीवी बहनों का मातम करना है, लेकिन पहले हुसैन ने का। ये आज की रात और आज की रात से ज़्यादा अहम है कल का दिन। अगरचे उसके लिए इमाम ने और भी एक तरीका बताया, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो कैनेडा के अंदर वेदर है उसमें वो मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। पहली मुहर्रम का रोज़ा और उसके बाद की दुआ क्या कहना। लेकिन ये तो इतना लंबा रोज़ा है कि रमज़ान के वाजिब रोज़े भी इन तारीखों में आ जाएं तो आदमी बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है कि रोज़ा रखे कि ना रखे। और अगर रोज़ा रखना पड़े तो कोई ऐसा मर्ज़ ढूंढ लो कि जो 4 बजे रोज़ा खुलवा दिया करे। ये सब कुछ चल रहा है आजकल, हमें पता है। तो खुलासा ये कि उसमें वाजिब सुन्नत रोज़े के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वेदर चेंज होगा, विंटर आएगा, पहली मुहर्रम के रोज़े को फरामोश ना करें। क्योंकि सफ़रे करबला में जो करबला का सफ़र आका हुसैन ने किया, इसमें सबसे ज़्यादा पूरे सफ़र में आका हुसैन ने सबसे ज़्यादा किसको याद किया? आपके जहन में जो शख्सियतें आ रही होंगी ख़ानदान की, वो नहीं, इस पूरे सफ़र में आका हुसैन एक पर्सनैलिटी को बहुत याद करते हैं। बहुत का मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट के बाद, लेकिन इस पूरे सफ़र में टाइम टू टाइम इमाम उनका जिक्र करते रहे। और फिर उसके जिक्र के हवाले से हमें वो पैगाम बाकी मासूमी ने दिया। ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जिक्र इमाम करते थे, ये है खुद हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चौथे इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा इस सफ़र में जो मदीने से शुरू हुआ करबला पे मुकम्मल हुआ, सबसे ज़्यादा हजरत यहिया का जिक्र करते थे, जॉन द बैप्टिस्ट यहिया का जिक्र करते थे। और बार बार कहते थे कि मेरे और यहिया के हालात कितने ज़्यादा सिमिलर टाइप के। कुछ चीज़ें फिर इमाम मासूमीन ने बताई। कुरान करीम ने कहा लम नजल यहिया वो हैं, ये नाम यहिया इससे पहले किसी का नहीं रखा गया, हम रख रहे हैं। आका हुसैन के लिए भी यही है ना कि हुसैन नाम, हुसैन अरबी का एक आम लफ्ज़ है, लेकिन सैकड़ों साल से अरबी बोलने वालों में से भी किसी ने नाम नहीं रखा था। और इस शहजादे का नाम क्या कह के रखा गया कि जिब्राइल अभी मेरे पास आए हैं कि खुदा ने नाम भिजवाया। और फिर ये कि दोनों की प्रेगनेंसी 6-6 महीने की थी और दोनों बड़ी मजलूमियत से शहीद हुए, ये छठे इमाम की हदीस पढ़ रहा हूँ, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी। और फिर दोनों के कत्ल में ऐसा आदमी इन्वॉल्व था कि जिसकी विलादत हलाल तरीके से नहीं हुई थी, वो यहिया के अंदर भी जनाब यहिया की शहादत और आका हुसैन की। और दोनों की शहादत के बाद 40 दिन तक सुबह शाम को सूरज रोया। अब ये ना समझिए कि आज के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, 1400 साल पहले के तो बेवकूफ़ थे। रावी ने कहा मौला सूरज कैसे रोता? इमाम ने कहा सूरज का रोना ये था होता था कि सुबह शाम को सूरज की जो सुर्खी थी बहुत बढ़ जाती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था रेड कलर का ही है उसका रोना। 40 दिन तक आसमान से खून नाजिल हुआ, कोई पत्थर उठाओ तो ज़मीन से खून निकल रहा है। यहिया का भी वाकया बाइबल में गवाही देती है और ये

हुसैन, तो बहुत दोनों में सिमिलर है ना, उसमें फिर ये जुमला आया इमाम का कि याद करो तुम जब जनाबे जकरिया ने, जो यहिया के वालिद हैं जकरिया, उन्होंने दुआ मांगी थी कि मुझे एक वारिस चाहिए और अल्लाह ने दुआ कबूल की, ऐसी दुआ कबूल की कि खुद दुआ मांगने वाला हैरान हो गया, खुदा बंदा ये मेरी दुआ कैसे कबूल हो रही है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी जो है वो बांझ है, उसकी औलाद नहीं हो सकती, आखिरा कुरान का लफ्ज है, टाइम नहीं है, बस मैं जल्दी से बात ख़त्म करता हूँ। यानी एक तरह से दुनियावी एतबार से इम्पॉसिबल काम है, दुनियावी एतबार से दुआ मांग रहे हैं दुआ, लेकिन जब दुआ कबूल हो रही है तो खुद हैरान हुए कि एज के एतबार से भी औलाद नहीं हो सकती और बीवी जो है उसके यहाँ भी औलाद नहीं हो सकती, और अल्लाह ने कहा हुआ अलैया हय्यनुन, तुम समझ रहे हो कि नामुमकिन चीज़ है, ये मेरे लिए बहुत ही मामूली आसान, हय्यन माने बहुत ही सिंपल चीज़ है मेरे लिए, मेरी कुदरत के लिए क्या है, जब मैंने तुझे पैदा किया जबकि तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरे बेटे को भी पैदा करूंगा। इमाम ने कहा ये पहली मुहर्रम थी जब अल्लाह ने नामुमकिन दुआ को कबूल किया, जो कोई चांस नहीं है दुआ कबूल होने का, आज के ज़माने में होते तो आप कहते सारी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हैं, औलाद हो ही नहीं सकती, जनाब ज़करिया तक नबी हैं, बहुत बुलंद मर्तबा, लेकिन कह रहे हैं कि दुआ तो मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि दुआ तो इंसान को मांगना है, कबूल ना हो तो अजर व सवाब तो क़यामत में मिलेगा ना, उस अजर के लिए दुआ मांगो, लेकिन इमाम ने कहा पहली मुहर्रम की दुआ में इतनी ताकत, आका हुसैन अपने चाहने वालों को सिर्फ करबला में अपने कुब्बे के नीचे बुला के दुआ कबूल नहीं करवा रहे, आप पहली मुहर्रम दुनिया के किसी इलाके में, किसी अज़ा खाने में, कहीं पर भी हो दुआ मांगे, इस दुआ को फरामोश ना कीजिएगा, बस ये समझिए कि जैसे शब कदर की दुआ आप कभी नहीं इग्नोर करते, जैसे अराफात की दुआ कभी आप फरामोश नहीं करते, जैसे 15 शाबान के अमल की दुआ फरामोश नहीं करते, आजकल एक अमल और बहुत पॉपुलर हो गया, अमल उम्मे दाऊद को आप नहीं छोड़ते, उसी तरीके से पहली मुहर्रम ये दिन मिस ना हो जाए। कल मैं ये बात कह सकता था क्योंकि आज टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे ये था कि कल कहने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये हुसैन ने मदीने से जो सफ़र शुरू किया तो यहिया को याद करना शुरू किया, यहिया को याद करना ये बता रहा कि हुसैन मदीने से निकलते वक्त ही ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, उसी वक्त से ही ये पता। बल्कि एक आध और भी ऐसे जुमले हमको मिलते हैं रिवायतों में, यानी आका को तो बहुत पहले से पता था लेकिन इशारे भी दिए सुनने वालों के सामने। मसलन रिवायत में जुमला है कि 28 रजब को जब आका हुसैन मदीने से चले, आज पहली मजलिस है तो इमाम के मदीने के सफ़र के चंद जुमले मसाहिब के पढ़ना, एक मरतबा महल बनी हाशिम में पहरा लग गया, अब्बास वाली अकबर सारे इंतजाम कर रहे हैं कि कोई 12 बरस का मुमैस बच्चा भी यहाँ ना आने पाए। हुसैन के घर वाले जा रहे हैं, फातिमा जहरा की बेटियाँ जा रही हैं, अली की बहुएँ जा रही हैं, पूरे हिजाब के इंतज़ाम के साथ अब्बास और अली अकबर इंतजाम कर रहे हैं, पूरा महल और सवारियां लाई गई, एक एक करके ये सवारियां हर बीबी के नाम से आ रही हैं और आका हुसैन फिजा के जरिए मैसेज भिजवा रहे हैं कि जैनब से कहना, क्या बीवियों से कहें कि बारी बारी आए और अपनी सवारियों पे बैठे। अच्छा, जब वह बीवियां चलने लगी ना तो हुसैन की छोटी बीमार बच्ची फातिमा सुहरा वो आगे बढ़ी और रबाब के करीब गई और कहा, अम्मा रबाब ज़रा एक लम्हे के लिए असगर को तो मेरी गोद में दे दीजिए। देखिए, आपको मालूम है ना कि जब कोई बीमार हो तो न्यू बॉर्न बेबी के करीब वो नहीं जाता, और अगर वो ना समझ हो तो घर वाले रोक देते हैं कि अभी ये बीमार है और ये बच्चा अभी अभी आया। सुगरा ने 10 रजब को अली असगर की विलादत हुई, 28 रजब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 वीक थे, सुगरा बीमार थी, चुनाचे अभी तक अपने भाई को गोद में नहीं लिया कि जब सेहत मिल जाएगी तो भाई को गोद में लेके प्यार करूँ। अब आगे आई का, अम्मा रबाब आप जा रही हैं, मेरा असगर भैया जा रहा, अब मेरा दिल चाहता है एक बार तो असगर को अपनी गोद में ले लूँ। रबाब ने नन्हे असगर को जो 3 वीक का है सुगरा की गोद में दिया, सुगरा ने असगर को सीने से लगाया और को कुछ ना कहा, बस एक जुमला कहा कि छोटी बहन छोटे भाई से कभी ऐसी मोहब्बत में कहती है भैया, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे। भाई इतना सुनना था, असगर इस तरह से सुगरा से चिमटा कि अब रबाब आगे आई, बेटा असगर आ जा, तेरे बाप का हुक्म आ चुका है, हमको चलना। असगर ने कोई तवज्जो ना दी। एक मरतबा उम्मे फरवा आगे बढ़ी,
جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ام

फरवा रबाब की बड़ी बहन यानी खाला है। अब आगे बढ़ी, असगर ने तवज्जो न दी। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, फूफी, असगर ने तवज्जो न दी। हर बीबी कह रही है असगर बेटा हमारी गोद में आ जा। फातिमा कुबरा बड़ी बहन आगे बढ़ी, असगर ने तवज्जो न दी। आखिर में खुद सानिए जहरा जैनब कुबरा आगे बढ़ रही, असगर भाई बेटा मेरी गोद में आ जा। लेकिन असगर है कि सुगरा की गोद छोड़ नहीं रहा। हुसैन का पैगाम तीन बार आ चुका है, आखिर खुद हुसैन आ गया बैतुल शरफ में। जैनब तुम्हें पता है कि हमें मदीने से जल्दी निकलना है, देर क्यों हो रही। जैनब ने कहा कि भैया क्या करें, असगर नहीं मान रहा। भाई इतना सुनना था, हुसैन असगर के करीब गए, एक मरतबा एक जुमला असगर के कान के करीब मुंह ले जाके कहा और असगर गोया उछल के बाप की गोद में आ गया। हुसैन ने कहा असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से अलग न करता, लेकिन करबला में जो जिहाद करने जा रहा हूँ उसमें मुझे तेरी ज़रूरत है। असगर तेरा खून मुझे चाहिए अपने जिहाद के लिए, बस इतना सुनना था। नन्ना असगर तड़प के बाप की गोद में आया और बीवियाँ सवारी पे बैठने लगीं। एक मरतबा उम्मे फरवा अपनी सवारी की जानिब चली, कासिम दौड़ के आए माँ को सवार कराया। उम्मे लैला बाहर आई, अकबर दौड़ के आए माँ को सवार कराया। उम्मे कुलसूम बाहर आई, उनकी औलाद नहीं है तो अब्बास छोटा भाई औलादों जैसा बहन को सवार कराया। और आखिर में एक बार सानिया जहरा जैनब कुबरा आ रही हैं। एक तरफ से अकबर आगे बढ़े, एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े, लेकिन हुसैन ने रोक दिया, नहीं तुम लोग रुक जाओ, जैनब को मैं खुद सवार कराऊंगा। आका ने जैनब को सवार कराया, ये 28 रजब है और वो 11 मुहर्रम आ गई। यही बीवियां हैं, सवारियां आई हैं, मिले नहीं हैं, अमारियां नहीं हैं, पर्दे नहीं हैं, अरे कोई सवार कराने वाला भी नहीं है। बस एक बार हर बीबी को मदीने का सफ़र याद आ गया, अपने अपने वारिस को आवाज़ दी। फरवा ने कहा कासिम बेटा तेरी माँ सवार हो रही है, तू भी ना आएगा। लैला ने कहा अकबर बेटा क्या माँ को सहारा न देगा। ये सुनना था। शरीकतुल हुसैन जैनब आगे बढ़ी और एक मरतबा कहा बीवियों घबराओ नहीं, अगर अकबर ना रहा, अगर हुसैन ना रहा, अभी मैं हूँ, मैं सवार कराती हूँ। फरवा को सवार कराया, लैला को सवार कराया, रबाब को सवार कराया, आखिर में अपनी बारी आई। दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। फुरात को देख के आवाज़ दी, अब्बास तेरी बहन सवार हो रही है, क्या तू भी सहारा ना देगा। भाई इतना सुनना था। एक बार मेरा बीमार इमाम आगे बढ़ा, गले में तौक है, पाँव में बेड़ी है, मगर कहा फूफी अम्मा घबराइए नहीं, अगर कोई ना रहा, अरे आपको आपका बेटा सज्जाद सहारा दे के सवार कर। अला वलानतुल्लाही अला आदाइहिम अजमाइन। परवरदिगार अहले बैत अतहार के इन मसाइब का वास्ता, अहले बैत के मानने वालों खुसूसन आज की मजलिस में जो लोग हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगार हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह देकर रोज़ क़यामत शफात का ज़रिया बना। हाजतमंदों की सारी हाजतें पूरी फरमा। जो लोग आज की मजलिस में, इनके ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, कुल मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। ज़हूर इमाम में ताजील फरमा।

आलम में अजमातम, तमाम आलम में अजमातम, हुसैन बेकस अलमगरों में सजे हुए है, अलमगरों में सजे हुए है, दिलों में फर्शे अज़ा बिछा है, तमाम आलम में आज तम तमाम में आज मातम, हुसैन बेकस का है, सियाह कपड़े सियाह चादर, गमों की गर्दो गुबार सर पर, सियाह कपड़े सियाह चादर, गमों की गर्दो गुबार सर पर, हे सोगवारो हे अश्क जारी, किसानी है जहरा बेरीदा है, तमाम आलम में आज तम तमाम आलम में, हुसैन बेकस हे, मदीने वालो खामोश रहना, गरीब ज़ैनब को कुछ न कहना, मदीने वालो खामोश रहना, गरीब ज़ैनब से कुछ न कहना, बसा हुआ घर जो ले गई थी वो करबला में उजर गया है, तमाम आलम में आज तम तमाम आलम, हुसैन बेकस अलम में मश्क के सकीना देखो, तो मोमिनो बस ये कह के रो लो, अलम में मश्क के सकीना देखो, तो मोमिनो बस ये कह के रो लो, चचा भतीजी का है ये निस्बत, वफाए अब्बास क्या वफा है, तमाम आलम में मातम आलम मातम, हुसैन बेकस ए, न मार बरछी दिले नबी पर, अभी हुआ है जवान अकबर, न मार बरछी दिले नबी पर, अभी हुआ है जवान अकबर, ये कत्ल जिसको तू कर रहा है, यही तो हम शक्ले मुस्तफ़ा है, तमाम आलम तम मम आलम में अजमातम, हुसैन बेकस हे, अज़ाए शब्बीर है इबादत, जनाबे ज़ैनब की है अमानत, अज़ाए शब्बीर है इबादत, जनाबे ज़ैनब की है अमानत, ये नौहा तेरे कलम से महशर, जनाबे ज़हरा की एक अता है, तमाम आलम अजमातम तमाम आलम में आज तम, हुसैन बेकस का हो हे, न चश्मे पूर्णम हो क्यों सवाली, जुलूस है जुलझना खाली, न चश्मे पूर्णम हो क्यों सवाली, जुलूस है जुलझना खाली, के मेरा दुल दुल सवारे मौला, ज़मीने करबल में सो रहा है, तमाम आलम में अजमातम तमाम आलम में अजमातम, हुसैन बेकस का हो रहा है, अलमगरों में सजे हुए है, अलमगरों में सजे हुए है, दिलों में फर्शे अज़ा बिछा है, तमाम आलम जमातम।

0: आलम में आज हुसैन बेकस का ए हुसैन शहीदे करबला वावेला हुसैन शहीदे करबला आ हुसैन शहीदे करबला वावेला हुसैन शहीद आ हुसैन इमामे गरीब वावेला हुसैन शहीद वावेला हुसैन इमामे मज़लूम वावेला हुसैन शहीद La Abbas Alam Daram Shishud Wawela Hussein Shahi La Qasim Naushadam Shishud Wawela Wala Wawela Imshab Janabe Fatima Wawela Hussein Shahi La Akbar Naujaman Shishud Wawela Hussein Shahi La Asgar Shirkaram Shishud Wawela Hussein Shahi Wawela Hussein Shahide Karbala Wawela Hussein Shahid La Surat al Mubarakat al Fatiha
1: Tawajjuh Ziyarat

सदाए हल मिन जो आ रही है, तुम इस तरफ हो या उस तरफ हो। सदाए हल मिन जो आ रही है, हम इस तरफ है या उस तरफ है, हमें अमल से है अब

भी होता है, बड़ा भी होता है, जवान भी होता है, एजुकेटेड भी होता है, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। वो कहते हैं मिसाल उसकी ऐसी है जैसे एक शख्स एक फार्मेसी में जाता है। जब वो शख्स फार्मेसी में जाता है दवा लेने के लिए, दवा बहुत होती है लेकिन उसके काम की दवा एक होती है। कहे मजलिसे हुसैन की बरकत ऐसी है कि हर कोई जो बैठा है इस मजलिस से अपने अपने काम की दवा ले लेता है, हर एक की दवा यहां पर मौजूद होती है। यह है फर्श एजा की अजमत। अजीजाने गिरामी, रसूल खुदा ने इस हदीस मुबारक में कहा इन्नल कत्ल हुसैन, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों में एक हरारत, एक आग लगी हुई है। ला तबरदो अबदन, यानी वो आग कभी भी अबदन बुझ नहीं सकती। ये पैगंबरे खुदा का हुक्म है, अल्लाह का इरादा है कि आपके दिलों में ये आग जल रही है। इन्नल कत्ल हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मुमिनीन। अजीजाने गिरामी, मुहर्रम शुरू हुआ, लोगों के दिलों में हरारत शुरू हो गई, दिल बेचैन होने लगते हैं, हर एक दूसरे से पूछता है मुहर्रम कब शुरू होने वाला है। यह हरारत अल्लाह का वादा है, कत्ल हुसैन की वजह से 14 सदियां गुजर गई, अभी भी ऐसे रोता है इंसान जैसे कल मरा है कोई। अपने बाप का गम भूल जाता है, हुसैन का गम नहीं भूलता। ये करबला का असर है, ये हरारत है जो अल्लाह ने जिंदा रखी है मुहर्रम में, इमाम हुसैन के गम में। अजीजाने गिरामी, जो मर्तबा हम इसके कायल नहीं, उलमा मना करते हैं कि अहले बैत को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हर मासूम मासूम है। और नज़र उलमा की ये है कि जो मासूम अगर उस ज़माने में होता तो वो वही करता जो उस मासूम ने किया है, लेकिन हुसैन का मर्तबा शहादत की वजह से अजीम है। उस्ताद अंसारियान अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं कि एक शख्स आता है इमाम के पास, और इमाम के पास आके कहता है मौला हम आप सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत हुसैन इब्ने अली से करते हैं उतनी किसी से नहीं करते। कह रहे हैं क्या मेरा ईमान सही है मौला? कहा तुम्हारा ईमान सही भी है और कामिल भी है। अजीजाने गिरामी, एक मिसाल दूं आपके जहनों को करीब करने के लिए, खुदा आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, 40 में ज़ियारत की करबला नसीब करे इंशाअल्लाह। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप ज़ियारत के लिए? करबला, लेकिन वहाँ नजफ भी है, काजमैन भी है, मौला अली का रोज़ा भी तो है, मौला अली से भी तो आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर इंसान कहता है मैं करबला जा रहा हूं, हर इंसान कहता है मैं करबला जा रहा हूं। अरबाब अज़ा, खास मासूमीन ने ताकीद की है, इंतजाम किया है, हदीसें बयान की हैं इस अजमत करबला और मुहर्रम को इस यहां तक पहुंचाने के लिए। किसी भी इमाम की शहादत होती है हम करबला का जिक्र जरूर करते हैं। दिन ईद का है, मासूम कह रहे हैं ज़ियारत हुसैन पढ़ो। अजीजाने गिरामी, अहमियत समझें। बस ये कल भी मैंने जिक्र किया, आज भी जिक्र कर रहा हूं, ताकीद कर रहा हूं इस बात की कि ये जिक्र हुसैन और ये मजलिसे अजा, ये फर्श अजा, इसकी अजमत समझते हुए इसे समझें। अजीजाने गिरामी, मासूम से हदीस है, मासूम फरमाते हैं कुल्लोना सुफनुन निजाते लकिन न सफी न तजद्दी अल हुसैन औसाओ व असरओ। मासूम कहते हैं

कि हम सब सफीने निजात हैं, सब सफी तमाम मासूम, लेकिन मासूम कह रहे हैं कि हम में से सबसे तेज और सबसे वसी जो कश्ती है वो हुसैन इब्ने अली की है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस अज़ीज़ाने गिरामी गौर करिए, कश्ती निजात तमाम मासूम हैं, लेकिन सबसे वसी और सबसे सरी, सबसे तेज हुसैन इब्ने अली है। खूब आप देख लें, इस वक्त हम जब यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया में हर इमाम बारगाह में ये कश्ती निजात खुली हुई है। इसमें कश्ती निजात में लोग वारिद होते हैं। कितने वारिद हो सकते हैं, कहा कोई गिनती नहीं है। जिस शहर में दुनिया में ढूंढो कश्ती निजात खुली है। कहा कितना जल्दी, कितने तेजी से इंसान को शिफा मिलती है, उसके रूह को शिफा मिलती है। कहा दो लम्हा रोता है, आंसू निकलता है, मासूम कहते हैं गुनाह बख्श दिए गए। सरी अजीजाने गिरामी, मैं लेकिन एक मिसाल जवानों के लिए दे दूं ताकि बात क्लियर हो जाए। देखें, हमारे यहां रिवायतों में है, दुआओं में है कि अहले बैत से तीन टाइप के लोग, अहले बैत से उनका रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है। एक वो जो आगे निकल जाते हैं, एक वो जो पीछे रह जाते हैं, और एक वो हैं जो कश्ती में सवार हो जाते हैं। गालिबन दुआए रजब के अंदर है। तीन किस्म की कैटेगरी है, एक जो आगे चले गए। तो कश्ती में अगर कोई आगे चले जाए और कश्ती में सवार नहीं हो तो वो बचेगा नहीं, वो गर्क हो जाएगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं, कश्ती तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं नहीं सवार हो सकता, मैं इस लायक का हूं, वो कहां मैं कहां, और पीछे रह जाए तो क्या ये बचेगा या गर्क होगा, बताएं। बस कामयाब कौन होगा, जो कश्ती में सवार होगा। कश्ती निजात है इसलिए ताकि सवार हो। एक जगह ऐलान हुआ कि भाई यहां पर एक कश्ती बन रही है, एक ट्रेन है या कश्ती बन रही है, ये फास्टेस्ट है। मसलन मैं यहां के बारे में नहीं पता, लेकिन इसी मिसाल के तौर पर यहां से अगर जांजीबार जाना है तो ये 10 मिनट में पहुंचा देगी। कहा फ्री भी है, पैसा भी नहीं है, और कहा कितने लोग बैठ सकते हैं, कहा अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग चाहे बैठ सकते हैं। मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं बोला चले चलते हैं। मैंने जाके देखा कि उस ट्रेन के बाहर लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, और नारे लगाने के बाद वो सब लोगों ने ट्रेन को चूमा और घर वापस आ गए। आप मुझे बताएं कि ये रोज 40 दिन तक अगर ये करते रहे तो कितनी बार जांजीबार पहुंचेंगे। बस कश्ती निजात इसलिए है ताकि नारे भी लगाओ, सवार भी हो जाओ। हुसैन की कश्ती आई इसलिए है ताकि सवार हो, ताकि मंजिल तक पहुंचो। कश्ती में सवार होने में एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज यह है कि मैं जाना तो चाहता हूं जांजीबार, लेकिन मुझे दार एस सलाम से मोहब्बत भी बहुत है, तो मैं चाहता हूं एक पैर मेरा कश्ती में रहे और दूसरा पैर मेरा दार एस सलाम में रहे। कश्ती में सवार होने के लिए अपने घर को छोड़ना जरूरी है। मुश्किल यह है कि हुसैन की कश्ती में सवार होने के लिए गुनाहों की दुनिया छोड़ना जरूरी है।

अल्लाह के लिए नहीं, गधे के लिए। रिवायतें हमारे पास कि अगर कोई शख्स नेक अमल अंजाम दे, रोजे कयामत पहुंचेगा, कहेगा मैंने इतने सारे नेक अमल अंजाम दिया था। खुदा कहेगा जिसके लिए दिया था जाके उससे सवाब ले ले। अमल की प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मासूम कहते हैं जब तुम किसी को कुछ दो तो अपने हाथ को चूम लो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों से अल्लाह सुभान व तआला ने लिया है। लेकिन अमल का करना आसान है, उसका खालिस बचाना, उसको उसका खालिस रखना ज्यादा सख्त है। तो पसंदीदा ने गिरामी, ये तमाम जो हमारे इस एक्शंस हैं मुहर्रम में, सबसे पहला उसका टेस्ट और फिल्टर यह है कि हम उसके अंदर इंटेंशन क्लियर रखें। लेमन लिल्लाह के लिए वलिल्लाह माफिस समावात वल अर्ज़, जमीन और आसमान किसके लिए? अल्लाह के लिए है। तुम्हें क्या चाहिए? उलमा कहते हैं नमाज हर चीज अदा करती है। जो चाहिए तुम अल्लाह से मांगो। दुनिया में क्या है? मौला अली कहते हैं कोई किसी को क्या देगा सिवाय उसमें से जो उसे खुदा ने दिया है। जाने के रामी, बस पहली चीज है लेमन, फिर उसके बाद दूसरा है लेमा। ये क्यों कर रहे हो तुम? अपने आप से सवाल करो, व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू? और ये कॉन्टेम्पलेशन से आता है, अपने आप से गौर व फिक्र करने से आता है। वाई क्लियर होना चाहिए, वाई एम आई डूइंग दिस, वाई एम आई रिसाइटिंग दिस मजलिस? आपकी प्रेज के लिए, किसी को खुश करने के लिए, या अपनी जिम्मेदारी को अहले बैत के सामने साबित करने के लिए? मुझे अपने आप को यह आंसर करना पड़ेगा। Why? What is the motivating factor? यहां पर second point, third point कैफा। हमें आमाल की कैफियत पे गौर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कम करो। बहुत बोलते हैं quantity versus quality। Why? Because we want both high quantity and high quality। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। बस खुदा ने इंसान को पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, क्या कह रहा है खुदा? ताकि तुम्हें बलाओं में डालूं, देखूं कि तुम में से अहसनो अमल वाले कौन से, बेहतरीन अमल वाले कौन से। इसी बात की मिसाल अल्लामा तबातबाई ने कुरान की तफसीर में दी है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान मजीद में सूरह हश्र की आयत नंबर 18 है, यहाँ पर खुदा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्ला वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। कुरान मजीद में सूरह हश्र की आयत 18 है। इसमें अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ये कह रहा है कि वो लोग जो ईमान ले आए हो, तकवा इख्तियार करो। तकवे का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह डराने वाला है, डर जाओ। अल्लाह डरने वाली चीज़ नहीं, अल्लाह मोहब्बत करने वाली चीज़ है। आप में से अक्सर अपने वालिद से मोहब्बत भी करते हैं और अपने वालिद से डरते भी हैं। आप अपने वालिद से डरते इसलिए हैं क्योंकि मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत नहीं करते तो डरते भी नहीं। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तकवे का मतलब होता है, जो इमाम खुमैनी या दीगर उरफा बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान ये एहसास करे कि वो अल्लाह की प्रेजेंस में जिंदगी जी रहा है। मादर महजर खुदा हस्तीम, हर जा हस्तीम खुदा हम हस्त, जहां हम हैं वहीं खुदा है, खुदा हमें देख रहा है। खुदा के साथ जिंदगी जीने को तकवा कहते हैं। डिफरेंट डायमेंशन है। डराने वाला अल्लाह नहीं है हमारा, अल्लाह मोहब्बत करने वाला है, इश्क करने वाला है। अगर मेरे वालिद सामने खड़े हैं जो

सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते क्यों, क्योंकि वालिद सामने खड़ा है मोहब्बत की वजह से। जब इंसान अपने वालिद के मोहब्बत में सिगरेट नहीं पी रहा है तो खुदा की मोहब्बत में गुनाहों को नहीं छोड़ सकता, खुदा देख रहा है। अजीजाने गिरामी, इस आयत में तकवा इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि ऐ बंदों देखो कि तुम क्या भेज रहे हो, देखो कि कल के लिए तुम आज क्या भेज रहे हो। यानी इन मजलिसों के जरिए से, फर्श अज़ा के जरिए से, मुहर्रम और अरबईन के जरिए से हम कुछ भेज रहे हैं, उसकी क्वालिटी तो चेक करो, क्या भेज रहे हो वहां पर। अल्लामा तबातबाई कहते हैं तीन पॉइंट्स इस आयत के अंदर है जिसे हमें हासिल करनी है। सबसे पहला ये कि इंसान अपने अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड करे जिस कैपेसिटी को कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन और गौर व फिक्र, यानी अपने कामों के अंदर रूटीन की वजह से काम ना करें बल्कि कॉन्टेम्पलेशन के बाद उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करें फिर अमल को अंजाम दें। दूसरा कहते हैं कि कॉन्टेम्पलेशन मुमकिन नहीं है जब तक आपके अंदर डिजायर टू लर्न एंड ग्रो नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो अल्लाह कह रहा देखो कल गलती की थी आज रिपीट ना करना, देखो सीखो। लास्ट चीज मिसाल में कहते हैं अल्लामा तबातबाई मिसाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हो और बाजार जाके आपको फ्रूट्स खरीदना है, तो आपने 2 किलो फ्रूट खरीदा, तो क्या आप आंख बंद करके फ्रूट ले लेते हो या उसमें से चूज करते हो जो बेस्ट है उसको उठाते हो? चूज करते हो ना, ऐसी तो नहीं उठा लेते हो। हम चूज भी करके जाते हैं तो हमेशा वाइफ कहती है अच्छा नहीं है, जो लोग हंस रहे हैं वो जानते हैं क्या कह रहा हूं। तो चूज करना, जिस तरीके से दुनिया में हम लोग फ्रूट्स चूज करते हैं, अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि अपनी आखिरत में जो भेज रहे हो क्यों ऐसे ही कुछ भी ले रहे हो, चूज करके भेजो वहां क्या भेज। इस मुहर्रम में, इस अरबईन में अगर आपके यहां कोई यतीम है तो चूज करो, कोई बच्चे की फीस नहीं भरी है तो चूज करो। Send the best where you'll need the most. तो हर अमल नहीं, वो अमल माहे मुहर्रम में करें जो आपकी नफ्स को तकवीयत दे, आपकी नफ्स को स्ट्रेंथन करे, आपको हुसैनी बनाने में मदद करे। कोशिश करें खुद हुसैन इब्ने अली से रिश्ता मजबूत करने के लिए, अकेले में बैठ के हुसैन से बात करें। ऐसा ना हो कि इतने सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स के अंदर मुझे वक्त ही नहीं मिले कि मैं मौला से 1-to-1 कभी बैठ के बात करूं। मेरा रिलेशन होना चाहिए मेरे मौला से। अजीजाने गिरामी, हुसैन जिंदा है, ये मजलिसों में नुक्ते के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी का सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए कि हुसैन जिंदा है। महसूस करते हैं हम लोग जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये महसूस करके कहते हैं कि मेरा मौला जिंदा है, मुझे देख रहा है। इसने दुखुल में पढ़ते हैं हम लोग यस्मऊन कलामी व यरुद्दून सलामी, वो लोग वो हैं जो मेरे कलाम को सुन रहे हैं, मेरे सलाम का जवाब देते हैं, मेरे आमाल को देख रहे हैं। ये है हुसैन इब्ने अली।

come here to make relation with my Mawla. One-to-one relation. I can talk to him. हम कहते हैं अबा अब्दुल्ला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब यानी वालिद, अब्दुल्ला यानी मैं अपने वालिद से बात कर रहा हूं जो मेरा रूहानी बाप है. यह है अबा अब्दुल्ला. अभी वक्त नहीं है इसकी तफसीर के बयान. अज़ीज़ाने गिरामी, यहां तक ये इंपॉर्टेंट है कि मोशन में नहीं जाए, मुहर्रम में रूटीन में नहीं जाएं. क्वेश्चन योरसेल्फ, डिग इन डीपर. डाउट भी जहां पर हो के शैतान की वजह से हो सकता है इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकॉज इंटेंशन में प्रॉब्लम है तो बाकी कुछ चीज असर नहीं रखेगी. खुद यहां तक हमने इंटेंशन की बात की, कल गोल सेटिंग की बात की थी, हुसैन इब्ने अली तक पहुंचने की, उनकी अजमत की, इंटेंशन में प्योरिटी की बात की. अब नेक्स्ट मरहले पे जाते हैं. अज़ीज़ाने गिराम, अगर मैं कहता हूं कि मैं इमाम हुसैन का शिया हूं, मौला अली का शिया हूं, हुसैन भी कहें कि तू मेरा शिया है, तब बात में दम है. कुछ लोग आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और इमाम हुसैन से कहते हैं अना मिन शियतकुम, हम आपके शियों में से हैं. इमाम ने कहा इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या बोल रहे हो? उसने कोई गलत बात तो नहीं कहा था? उसने कहा मौला मैं आपका शिया हूं, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? जो तुम कहोगे रोजे कयामत खुदा कहेगा कि तुम साबित करो, और ऐसा ना हो कि रोजे कयामत खुदा कहेगा कज़िब था, तू झूठ बोल रहा. हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं. मौला हुसैन आगे जाके कहते हैं नहीं तुम हमारे चाहने वाले हो, कहो कि मैं तुम मेरे मोहिब हो, कहो कि तुम मेरे चाहने वाले हो. फिर मौला अली ने तीन क्वालिटीज ऐसी बताई जो आपके हमारे अंदर से सल्ब होनी चाहिए, कैंसल होनी चाहिए. कहा कि हमारे शिया वही हो सकते हैं जिनके अंदर ये तीन क्वालिटीज ना हो, तीन नेगेटिव ट्रेट्स ना हो. सबसे पहला कहा इन्ना शियतना मन सलमत कुलूबुहुम मिन कुल्ले गिशिन व गिल्लिन व दगलिन. का हमारा शिया वही हो सकता है जिसके अंदर तीन चीजें नहीं हो. एक, गिश ना करता हो, यानी उसके मामलात जिंदगी के अंदर मिलावट उसके अंदर ना पाया जाता हो. हम समझते हैं दीनदार यानी वो जो बहुत नमाजें पढ़ रहा है, बहुत रोजे रख रहा है. मासूम कह रहे हैं कि अगर किसी की दीनदारी आपको चेक करना है तो देखो कि वो मामलात में कैसा है. अगर गिश है, मामलात में झोल है, इंटरैक्शंस में, ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम है, तो ये दीनदार नहीं है, इसके ऊपर दीन का लेबल है. हुसैन कह रहे मेरा शिया नहीं हो सकता है अगर मामलात में मिलावट पाई जाती है. अब ये मामलात हर चीज के अंदर, ईमान में मिलावट, हर जगह पर मामलात में, बिजनेस में, रिस्क में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिलेशन में, फैमिली लाइफ में, हर जगह जहां भी मिलावट पाई जाएगी, सबसे बड़ी मिलावट अपनी नफ्स के अंदर है. कि शैतान को नो एंट्री थी, आपने एंट्री दी, वहां मिलावट हो गई. तो पहली चीज क्या है? गिश से बचना, अपने मामलात को पाक रखना, आपके चाहे रिज्क को हलाल रखना. अगर ये रिज्क हलाल नहीं है तो मुश्किल है, मामलात में गिश है तो मुश्किल है. कहा दूसरी चीज क्या है? कहां के हसद ना हो मेरे शियों के अंदर. अजीज आने के नाम, हसद कैंसर की तरह है.

इंटरनली खा जाता है। इमाम कह रहे हैं कि मेरा शिया यकीनन हासिद नहीं होगा, हसद करने वाला नहीं होगा। आप देखें रिवायतें कैसी हैं, रिवायतें कहती हैं कि मोमिनीन, जो मोमिन होगा, ईमान और हसद कभी भी एक जगह मिल नहीं सकता। यानी इंसान के अंदर ईमान भी हो और इंसान के अंदर हसद भी हो, ये दोनों चीज साथ में मिल नहीं सकती। यानी मैं अपने आप को मोमिन भी समझ रहा हूं, मैं आपको अपने आप को इमाम हुसैन का शिया भी समझ रहा हूं, आजादार भी समझ रहा हूं, हुसैनी भी समझ रहा हूं, लेकिन इसी फर्श अज़ा पे कोई बैठा है जिसकी खुशी से, जिसकी कामयाबी से मेरे दिल में चुभन है, यानी मैं हासिद हूं। हसद करने वाला और ईमान दोनों साथ में जमा नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत रिवायतें हैं लेकिन वक्त महदूद है, लेकिन हसद ईमान को ऐसे खा जाता है, मासूम कहते हैं जैसी जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इस कैंसर से बचना जरूरी है। रिवायत एक और है जहां मासूम कहते हैं हसद करने वाला इसके पहले कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए हमेशा वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर दो लोग एक दूसरे से हसद, एक बंदा एक किसी से हसद करता है पड़ोसी से, पड़ोसी को पता भी नहीं है ये मुझसे हसद करता है, रोज ये मरे जा रहा है पड़ोसी के हसद में, वो पड़ोसी को तो पता भी नहीं है लेकिन ये मरे जा रहा है। उसने ये गाड़ी कैसे ले ली, उसने घर कैसे कर लिया, उसकी शादी यहां कैसी हो गई, उसकी बेटी का ये कैसे हो गया, उसके बेटे का ये कैसे हो गया। इमाम खुमैनी कहते हैं टेस्टर है, कैसे चेक करें हसद है कि नहीं। कहते हैं कि अगर किसी मोमिन के बारे में या किसी शख्स के बारे में आपको कभी कोई खबर मिलती है कि उसके यहां ये कामयाबी या खुशहाली हासिल हुई है, आप अपने दिल के स्टेटस को चेक करो, आपके अंदर खुशी हो रही है या मलाल हो रहा है। अगर मलाल हो रहा है किसी की खुशी पे, किसी की कामयाबी पे, यानी मेरी नफ्स हसद की बीमार और शिकार है। और जब तक हसद से मुकाबला नहीं होगा तब तक शिया नहीं बन सकते, हुसैनी नहीं बन सकते। हुसैन कह रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी, गौर करें अल्लामा मजलिसी ने एक किताब में हसद के तकरीबन 7 पॉइंट्स बताए कि हसद क्यों होता है। मैं कुछ आपके सामने बयान करता हूं, एक सलवात का सहारा दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं लिस्ट डाउन करूंगा, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, वक्त नहीं है। एक कहते हैं कि इंसान की अगर किसी से दुश्मनी होती है तो जिससे दुश्मनी होती है उसका हर नेक काम भी इसको बुरा ही लगता है। वो अमल व अमल की वजह से नहीं है, दुश्मनी की वजह से है। दो कहते हैं किब्र, इंसान को लगता है कि मैं बड़ा हूं, इस वजह से उसे दूसरों का काम अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कल ये भी बड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज कहते हैं कि इंसान कभी कभी ताज्जुब में हसद करता है सिर्फ गुमान की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर वो शख्स ने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, हकीकत नहीं है लेकिन गुमान की बुनियाद पर भी इंसान हसद कर रहा होता है। फिर कहते हैं कभी कभी खौफ की वजह से इंसान हसद करता है। खौफ क्या है कि मैं तो बड़ा हूं, कहीं वो बड़ा हो गया तो उसके आगे बढ़ने से इसे खौफ लगता है, इसे लगता है कि वो आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसे पता नहीं कि खुदा के यहां कमी नहीं।

हैं। खुदा के यहां केक ऐसा नहीं है कि तुम्हें दे दिया तो उसका खत्म हो गया, खत्म नहीं होता वहां। उसके आगे और चीजें हैं लेकिन मैं उसको स्किप करता हूं। अजीजाने गिरामी, सॉल्यूशन क्या है हसद का? इमाम खुमैनी कहते हैं कि अगर आप हसद की बीमारी अगर आपके अंदर आई है तो आप क्या करें? कहते हैं कि सबसे पहली चीज ये करें कि अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं मरीज हूं। हम नहीं मानते मैं मरीज हूं। जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी सॉल्व कर सकते नहीं। में से कौन इधर बैठ के बोलेगा हां मेरे अंदर हसद की बीमारी है? हम जब मजलिस सुनते हैं जब कोई अच्छी बात होती है तो ढूंढते हैं मेरे अंदर है ये, और कोई बुरी बात होती है, कोई बुरी सिफत की बात होती है तो आजू बाजू देखते हैं। यानी मजलिस जिसके लिए है वो नहीं पढ़ रही है। अहले बैत और दीन हमारा क्या कहता है कि जब कोई बुरी बात बयान की जाए, बुरी सिफत बयान की जाए तो तुम अपने अंदर चेक करो, खुदाया मेरे अंदर तो ये नहीं है, और जब नेकी की बात की जाए तो दूसरों में देखो कहीं इसके अंदर ये नेकी कितनी अच्छी है। खुदा ऐसे लोगों को बुलंद करता है। तो सबसे पहली चीज इमाम खुमैनी कहते हैं हसद की बीमारी से बचना है तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे अंदर मुश्किल है। दूसरी चीज कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर मुश्किल है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, द सेकेंड स्टेप इज जब मैंने किसी को देख लिया, मुझे पता चल गया मसलन फला मौलाना से मेरी हसद है यार, वो मजलिस अच्छी पड़ता है, उसकी ज्यादा चलती है, मेरी कम चलती है, मिसाल दे रहा हूं ऐसे, तो मैं क्या करूं? मैं ये करूंगा कि मैं मोहब्बत का इजहार करूंगा उसकी तरफ जिसके लिए मेरी नफ्स मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उसकी मुखालिफत करूं। इमाम खुमैनी कहते हैं कि आपकी नफ्स से लड़ो, आपकी नफ्स कह रही है कि इसका बुरा सोचो, आप एग्जैक्टली उसी का ऑपोजिट करो। मिसाल के तौर पर फला शख्स है, फला शख्स मेरे दिल में हसद है उसके लिए, लेकिन इमाम खुमैनी कह रहे हैं कि जाओ सरेआम उसकी तारीफ करो ताकि तुम्हारी नफ्स की ख्वाहिशों को कुचलने की आदत अपने अंदर पैदा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बस अजीजाने गिरामी, फिर इमाम खुमैनी कहते हैं और अल्लाह से कंटिन्यूस दुआ करते रहो क्योंकि अल्लाह का नूर और तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत और नफ्स ने जो मोहब्बत की ताकत पैदा किया है नेकी के लिए, वो उस अंधेरे को कुचल देगा। कब? जब तुम कंटिन्यूस कोशिश भी करते रहो और अल्लाह से दुआ भी करते रहो। ये दूसरी क्वालिटी थी अज़ीज़ाने गिरामी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल दगल के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। बस हुसैन इब्ने अली तक पहुंचना है अज़ीज़ाने गिरामी तो वो पाक हैं, पाकीज़ा हैं, हमें भी अपने अंदर पाकीज़गी को लाना होगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना होगा, तब तो जाके मैं हुसैन से मिल पाऊंगा, तब तो मैं हुसैन के करीब पहुंच पाऊंगा। अरबाब अज़ा, बस दो मुहर्रम आ गई। दो मुहर्रम वो तारीख है कि काफिले हुसैन करबला पहुंच गए। बस काफिले हुसैन करबला पहुंच गया। ये वो सरजमीन है जहां से मौला अली गुजर रहे थे जंगे जमल के बाद, तो मौला अली रुके और मौला अली रुकने के बाद यहां पर मौला अली ने हुसैन के गम में गिरिया किया। अरबाब अज़ा, मौला अली हजरत फातिमा जहरा से बहुत मोहब्बत करते थे,

उलमा कहते हैं कि जंगे जमल 25 साल के बाद हुई थी, लेकिन जंगे जमल में एक बार एक सहाबी ने मौला अली को देखा कि गोशे में बैठ के रो रहे हैं। पूछा, क्यों रो रहे हो अली? कहा, फातिमा की याद में रो रहा। हार बाबे अजा, ये वो जमीन है जहां पर तमाम अंबिया आए, तमाम अंबिया ने जियारत की। मौला अली ने भी कहा, यही वो जमीन है जहां हुसैन का खून बहाया जाएगा। अरबाब अज़ा, दो मुहर्रम होने से पहले वो मंजिल भी आई थी जिस मंजिल में हुसैन का काफिला

मौजूद था लेकिन दुश्मनों के पास पानी ना था। हुर का लश्कर इस हालत में पहुंचा था कि अगर हुसैन पानी ना देते तो प्यास की शिद्दत में ये मर जाते। हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने कहा पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ। अब्बास, अरे सिर्फ ये नहीं कहा, कहा घोड़ों को पानी पिलाओ और कहा उस वक्त तक पानी पिलाना जब तक घोड़े खुद अपना मुंह ना हटा ले। हाय हुसैन, घोड़े की प्यास की इतना की इतनी फिक्र है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के बाद इन्हीं खैमों से सदाएं बुलंद होगी, अलताश अलताश अलताश। हार बाबे ऐसा आप सुनते हैं ना कि 8 मुहर्रम को ये मसाइब सुनते हैं कि जब हजरत अब्बास उस खैमे में गए थे जहां पानी रखा होता था, वहां बच्चों की कैफियत ये थी कि बच्चे जमीन पे लेटे हुए थे, अरे वो मशकीजे सीने से लगाए हुए, पानी नहीं है, काश थोड़ी ठंडक मिल जाए। हार बाबे ऐसा, 2 मुहर्रम आ गई, हुसैन का काफिला करबला पहुंचता है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, घोड़े बदले गए, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। पूछा बताओ इस जमीन का नाम क्या है? कहा इस जमीन का नाम कर्बोबला है। हुसैन ने कहा हाँ ये कर्बोबला है, ये बलाओं की जगह है। हुसैन ने कहा ये वही जमीन है जहां खून बहाया जाएगा। आज़ादारा ने हुसैन इब्ने अली, जैसे ही हुसैन करबला पहुंचे सबसे पहले आपके बारे में सोचा। बनी अब्बास को बुलाया, बनी अब्बास के खैमे, बनी अब्बास के कबीले वालों को बुलाया और बुला के कहा कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम कत्ल कर दिए जाए और दुश्मन हमें दफन ना करेगा। अरबाबे अज़ा मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, यानी मौला हुसैन कह रहे हैं कि हमारे लाशे करबला में पड़े रहेंगे, दफन नहीं होंगे, दुश्मन के नजिस लाशे दफन होंगे लेकिन अहले बैत के लाशे पड़े रहेंगे। आर बाबे अजा इस कबीले वालों को कहा कि देखो देखो जब हम शहीद हो जाएं तो हमें दफन कर देना, और जो हमारे जायर आए तो 3 दिन तक उन्हें खाना खिलाना पानी पिलाना। हाय हुसैन, जो प्यासा शहीद हो गया लेकिन जव्वारों के लिए कह रहा है 3 दिन तक पानी पिला खाना खाना खिलाना। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद इस हकीर सी इबादत को तेरी बारगाह में मकबूल फरमा। या अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद कर दे। या अल्लाह, मज़लूमीन को ज़मीन का हाकिम करार दे। या अल्लाह, बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बीमार हैं बीमार करबला के सदक़े में उन सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह, बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे जवानों को करबलाई जवान बना दे, हमारी बहनों को ज़ैनबी खातून बना दे। या अल्लाह, हम सब को इमाम महदी के ज़हूर के काम करने के लिए तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह, बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद मराज इकराम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रख। या अल्लाह, रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्ला मुश्तबा खामिनाई की हिफाजत फरमा और उनके दुश्मनों को नीस्त व नाबूद कर दे। मातम हुसैन।

वतन सदके अजब गुरबत है अपनी है सी गुरबत पर वतन सदके जहाँ पाए हम अपना मुँह दुआए कर

1930 लाहौर, एक आवाज बुलंद होती है। मैं कसाई नहीं हूं। ये सदा ऐसी गूंजी कि मगरिब के ऐवान इख्तदार और मशरिक के खुद फरोश इससे कांप उठे। आखिर ये बात शुरू कहां से हुई? 1876 में सहारनपुर के एक जमींदार घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती है। माँ बाप इस बच्चे का नाम आगा हैदर रखते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने इसे वकालत का शौक दिलाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत के सफर का आगाज किया। ये सफर लाहौर हाई कोर्ट में जज बनने तक जारी रहा। यही वो जमाना था जब पूरे मुल्क में इनकलाब की आग तेजी से फैल रही थी। इत्तेफाक से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा देने के लिए लाहौर में जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस जी सी हिल्टन और एक हिंदुस्तानी जज को ट्रिब्यूनल के तौर पर चुना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दिली ख्वाहिश थी कि ये कमेटी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाए, लेकिन यहाँ उस हिंदुस्तानी जज ने एक ही लम्हे में अपना पूरा कैरियर और शानदार मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जस्टिस आगा हैदर ने एक यजीदी निज़ाम के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, जस्टिस आगा हैदर, उनके लिए बात वाज़ थी। आगा हैदर हिंदुस्तानी इनकलाबियों को सजाए मौत नहीं देने वाले, मगर बरतानवी हुकूमत शदीद मखमसे का शिकार थी। क्यों? क्योंकि अगर तीनों जज सजाए मौत पर मुत्तफिक न होते तो यह सजा नहीं दी जा सकती थी। हुकूमत ने आगा हैदर को अपने हक में राजी करने के लिए एक नुमाइंदा भी भेजा, लेकिन उन्होंने उस शख्स को यह कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया कि मैं एक जज हूं, कोई कसाई नहीं हूं। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि एक हिंदुस्तानी जज का पहाड़ जैसा ज़मीर और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और सरकारी ओहदों का सामना था। लेकिन सोचिए, एक जज ने ऐसे इनकलाबियों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? वो चाहते तो अपना कैरियर, दौलत, शोहरत, रुतबा और मकाम हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी उन लोगों के लिए जो मज़हब में उनके भाई भी नहीं थे। उनके अंदर ये हौसला, ये इनकार करने की ताकत कहाँ से आई थी? इस सवाल का जवाब छुपा है सदियों पहले के एक फ़लसफे में, जिसे अंग्रेज़ों का मादी जहन कभी भी समझ नहीं पाया। चलिए इस कहानी के असल आगाज़ पर चलते हैं। 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च, चावल, रोटी, तेल, अदरक, गरम मसाला और नारियल लेने के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। शुरू में तो ये बज़ाहिर एक आम सी तिजारत नज़र आ रही थी। यहाँ से मसाला वगैरह जाता था और वहाँ से लोहा, तांबा और फूलाद का बहुत सारा सामान आता था। लेकिन धीरे धीरे ये तिजारत हिंदुस्तान पर हुकूमत के बारे में सोचने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अगरचे एक तिजारती कंपनी थी, मगर 2.5 लाख सिपाहियों की जाती फौज रखती थी। जहां तिजारत से फायदा ना पहुंचता, वहां ये अपने जोर और जबरदस्ती से उस काम को करवा लेते थे। उन्होंने बर्रे सगीर पर जब कब्जा करना शुरू किया तो वो सिर्फ ज़मीनें नहीं खरीद रहे थे, बल्कि यहाँ के हुक्मरानों की गैरत, उनके ज़मीर और उनकी आज़ादी भी खरीद रहे थे। तारीख गवाह है कि एक के बाद एक रियासत अंग्रेज़ों के मादी लालच और खौफ के सामने घुटने टेकती चली गई। राजे महाराजे और नवाब अपने ताजो तख्त बचाने के लिए बरतानवी इस्तेमार के वजीफा खार बनते चले गए। 1757 जून की झुलसा देने वाली दोपहर, बंगाल का मैदान पलासी तारीख के एक ऐसे मोड़ का गवाह बनने जा रहा था जिसने अगले 200 सालों के लिए पूरे बर्रे सगीर को अंधेरे में ढकेल दिया। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 से ज़ायद फौज और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की क़ियादत में ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद हज़ार सिपाही। ये कोई आम जंग न थी, बल्कि एक वफादार वतन
और गद्दार जहनों के बीच की जंग थी। सिराजुद्दौला महज 24 साल का एक नौजवान, जिसने एक साल पहले ही अपने नाना अली वर्दी खान की वफात के बाद बंगाल की कमान संभाली थी। अपनी हुकूमत के आगाज में ही उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत की आड़ में अपना असर और रसूख बढ़ा रही है और उसके खिलाफ साजिशें कर रही है। सिराजुद्दौला की आंखों में बंगाल की खुद मुख्तारी और आज़ादी का ख्वाब था, लेकिन अफसोस, जब जंग का मैदान गर्म हुआ तो उनके सिपह सालार को अगली नवाबी का लालच देकर खरीद लिया गया और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की गद्दारी ने भी उस नौजवान को तन्हा कर दिया। तारीख लिखती है कि जंग से एक रात पहले ही तोपों में पानी भर दिया गया और गोलों को भिगा दिया गया ताकि जंग में शिकस्त हो जाए। वफादार सिपाहियों ने धोखा दिया और बिलाखर नवाब सिराजुद्दौला को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव रातों रात यूरोप के अमीर तरीन शख्स में से हो गया। जब उनका सर कलम हुआ तो सिर्फ एक महल का चिराग नहीं बुझा था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर बरतानवी इस्तेमार और गुलामी की सिया रात छा गई थी। लेकिन यहाँ जहन में एक अहम सवाल पैदा होता है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की शरायत क्यों नहीं मानी? वो चाहते तो अय्याशी की जिंदगी गुजार सकते थे, अपनी सल्तनत बचा सकते थे। आखिर वो कौन सा जज्बा था जिसने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सर झुकाने के बजाय मौत का इंतखाब करने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब देने से पहले अब आपको 1857 के अवध में ले चलते हैं। वही अवध जिसे अंग्रेजों ने सबसे आखिर में फतह किया। ऐसा क्या हुआ कि प्लासी के मैदान से अवध तक पहुंचने में अंग्रेज हुकूमत को 100 साल लग गए? इसकी एक अहम वजह वहां मौजूद बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी जैसे मुजाहिदीन थे। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के वालिद टीपू सुल्तान के मुशीर थे। बचपन ही से आपके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत

मोहब्बत पाई जाती थी। वो हाथी पर बैठ के चलते थे और उनके आगे एक हाथी चलता था जिस पर डंका बजाया जाता था। इसी वजह से आपका नाम डंका शाह भी पड़ गया और ज्यादातर लोग आपको इसी नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उनका नाम अंग्रेजी अफवाज में खौफ व हिरास के साथ लिया जाता था। इसी वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने आपके सर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था अगर कोई आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। आखिरकार 5 जून 1858 को धोखे से आपको शहीद कर दिया गया। इन तमाम तारीखी वाकयात और इनकार के धागे, चाहे वो 1757 का बंगाल हो, 1858 का अवध या 1930 का लाहौर, सब के सब जाकर मिलते हैं 61 हिजरी के तपते हुए सहरा से, जहां बच्चों को माओ की लोरियों में सिखाया जाता है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत कहीं बेहतर है। जहां बचपने से ही बच्चों को आजादी और हुर्रियत का सबक सिखाया जाता है, जहां उन्हें यह बताया जाता है कि मजलूमों की ढारस बन जाओ और जालिम की आंख का कांटा, ये मत देखो कि जुल्म किस पर हो रहा है, वो अपना है ये पराया।

हाँ ये करबला है। ये वो करबला का आफाकी पैगाम है जो खून की तरह तशय्यो और पैरवान हुसैन इब्न अली की रगों में दौड़ रहा है। जब इमाम अली मकाम के सामने दुनिया की सबसे बड़ी जाबिर सल्तनत खड़ी थी तो उन्होंने एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो हर दौर के निज़ाम इस्तिकबार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।

0: आपने फरमाया था मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा कभी भी यजीद जैसे की बयत नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक तारीखी जुमला नहीं बल्कि हर हुसैनी के लिए एक अबदी जाबते हयात है। एक हुसैनी चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में हो, जब वो अपने सामने यजीदी निज़ाम और जुल्म और नाइंसाफी को देखता है तो उसका ज़मीर उसे जालिम के सामने समझौता करने की इजाज़त नहीं देता। अब अगर हम तारीख के इस पूरे तसलसल को आज की 15वीं सदी के जदीद दौर में देखें तो हमें बिल्कुल भी हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों आज का ईरान और शहीद रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्ला सैयद अली खामनाई आलमी इस्तिकबार और फिरौनों की आंखों में सबसे ज्यादा खटकते हैं।
1: मिसली यजीद कैसी मिसली मैम कैसी मिसली यजीद पे आते में कौन है
0: ये कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई निजी फायदा या नुकसान नहीं है, बल्कि ये वही हुसैनी उसूल है जो सदियों बाद भी पूरी आबोताब के साथ जिंदा है।